तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाग ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवा, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा, कौन कर्म कौन निहकर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जित आवत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन तूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख निहकर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समय समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभु बनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावण्या, हां वारी जियो वारी गुरमुख मंतन पावण्या, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावण्या, रहाओ तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा, थान थनंतर तू है एको एक वरतावण्या, सगल मनोरथ

अंध कूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नजर निहाले गुण गावे पूर्ण अबनासी कह संतोट न आवने ऐथे उथे तू है रखवाला मात गर्व मैं तुम ही पाला माया गन्ना पोहै तिन कौ रंग रते गुण गावने आ क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बने अवर न जानने आ जिस कौ तू प्रभु पया सहाई तिस तत्ती वाव न लगे काई तू साहेब सरण सुखदाता सतसंगत जब प्रगटा बनिया तू ऊचा था हुआ पारा मोला तू साचा साहेब दास तेरा गोला तू मीरा साची ठकराई नानक बल बल जावनिया माज महला पंजवा घर दूजा नित नित दै संभाली है मूला मनो विसारी है रहाओ संता संगत पाई है जे जमकै पंथ ना जाई है तोसा हर का नाम लै तेरे कुले न लागे गाल जियो जो सवरंदे साई है नरक ना सही पाई है तत्ती वाव न लगई जिन मन उठाया है जियो सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने हर तन जिनी संजया सही गंभीरिया पार जियो हर अम्यो रसायन पीवी है मोह डिठै जन कै जीवी है कार्ज सब सवार लै नित पूजो गुर के पाव जियो जो हर कीता अपना तने गुसाई जापना सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिसद भाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया एह रस भोगण पातशाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कारै लाग जियो करता मन वसाया जन्मै का फल पाया मन पावंदा कंत हर तेरा थिर होवा सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै भंजन की शरण आया लाए अंचल नानक तारियां नु जिता जन्मया पार जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद माज महला पंजवां घर तीजा हर जप जपे मन धीरे रहाओ सिमर सिमर गुर देओ मिट गए पै दूरे शरण आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे झूरे चरण सेव संत साध के सगर मनोरथ पूरे घट घट एक वर्तदा जल थल महियल पूरे पाप बिनासन सेवया पवित्र संतन की धूरे सब छड़ाई खसम आप हर जा पई ठरूरे करते कियत पाप सो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रता सच नाए हर वेख सदा हजूरे बारह माहा माज महला पंजवां घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम चार कुंट दह दिस भ्रमे थके आए प्रभु की साम तेन दुदै ते बाहरी किते ना आवे काम जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम हर नहा ना मिलिए साजने कत पाइये विश्राम जित घर हर कंत ना प्रगटई पठ नगर से ग्राम सर्ब सिंगार तंबूल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निचल ताम चेत गोविंद आराधिया होवे आनंद कणा संत जना मिल पाई है रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा
ਇਕ ਖੇਨੂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਾਣਾ ਜਲਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁਖ ਗਣਾ ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਪਾਗ ਮਣਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ ਵੈਸਾਖ ਤੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ ਹਰ ਅਵਨਾਸੀ ਓਹ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠੈ ਤੰਦੈ ਮੋਹ ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹੇ ਦੈਵ ਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै पाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुण मथे जो लिखे आस रैन विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिए सो दरगह होए खलास कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी।

से पादोए नरक ना पाई गुर रखन वाला हेत। असन प्रेम उमाड़ा क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के हों तन कह लागा पाए, विण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाहीं जाए। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे या गाए, आप ते आग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कतै ना जाए, प्रवण दूजा को नहीं नानक हर शरण आए। असु सुखी वसंदियां।

मान आठ साठ तीर्थ सगल पुन्नो जी दया परवानो जिसनों देवे दया कर सोई पुरख सुजान जिना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान माग सुचे से कांडी है जिन पूरा गुर मेहरवान फालगुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए इच पुनी वड भागनी वर पाया हर राए मिल सहिया मंगल गा वही गीत गोविंदया लाए हर जिहा अवर न दिसई कोई दूजा लवै ना लाए हलत पलत सवार निचल दितिया न जाए संसार सागर ते रखियन बहुना जन्मै ताए जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए फल गुण नित सलाही जिसनो तिल ना तुमाए जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निद चरण हर पहो जल बिखम तरे प्रेम भगत तिन पाईया बिखिया नाहें जरे कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म।

नानक मंगे दर्श दान, कृपा करो हरे। माज महला पंजवां, दिन रहन एको अंकार, सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना, हर सिमरी दिन सब रहन, आप त्याग सरनी पवा, मुख बोली मिठड़े वैण, जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन, जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण, हर पिर बिन चैन न पाईए, खोज डिठे सब गैण, आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देण, कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण, हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण, नानक की बेनंतिया हर सुरजन देखा नैण, जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार, मरण जीवन आराधना सबना काया धार, ससरै पईए तिसकंत की वड्डा जिस परवार, ऊंचा अगमे आप गाद बोध किशंत ना पारावार, सेवा सा तिस भाव सी संता की होए शार, दीना ना दयाल देव पत ते उदारण हार, आज उगादी रखदा सच नाम करतार, कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार, मंत्र अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार, दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कह सत बलिहार, संत आराधन सत सदा सबना का बख्शेंद, जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद, गुर सबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत, कीमत कहन न जाइए परमेश्वर बेअंत, जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत, जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत, नानक जीवै जप हरी दोख सबे ही हंत, दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत, सर्व कला प्रभ पूर्ण मन ने माणी थाओ, हर ओट गही मन अंदरे जब जब जीवा नाओ, कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ, जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ, उद्यम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ, दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ, अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगमया माओ, मन विछड़िया हर मेली है नानके हो सवाओ, सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ, वार माज की तथा श्लोक महला पहला, मालक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, श्लोक महला पहला, गुरदाता गुर है वैकार गुर दीपक तेह लोए, अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए, महला पहला।

गए से कीत पुकारिता, उड़िया हंस दसायरा, आया गया मोया ना, पिछे पतल सद्यो का, नानक मनमुख अंध प्यार, बाजगुरु डुबा संसार। महला पहला। दस बाल तन बीस रवण, तीसा का सुंदर कहावे, चालीसी पर होए, पचासी पग खिसै।

क्या पैदा होए जा मन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास। क्या कपड़ क्या से सुखाली, की जय भोग बिलास। क्या लश्कर क्या नेवखवासी, आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश पवड़ी। जाति रह क्या हाथ सच परखी है, मवरा होवे हाथ मरिया चखी है। सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म ने सरदार दर दीवाणी है। फुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बिचार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, एक नी बदे पार एक ना ताखती। श्लोक महला पहला। जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़, सन की सारा चिथिया कल लया तन झाड़। दोए पुड़ चक्की जोड़ कै पीसने आए बैठ, जो दर रहे सो बरे। नानक अजब डेठ महला पहला, वेख जे मिठा कटिया कट कुट बद्दा पाए। खुंडा अंदर रख कै दिन सो मल सजाए, रस कस टटर पाईए तपै तैवल लाए। पीसो फूक समालिए दिचै विजा लाए, नानक मिठै पतरिए वेखो लोका आए। पवड़ी एक ना मरना चेत आस कनेरिया, मर मर जमै नित किसै ना केरिया। आपन रै मन चेत कहन चंगेरिया, जबरा जै नित नित मन मुख हेरिया। मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बदे करन सलाम खसम ना पाणिया। सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी, करसन तक सलाम लिखिया पावसी। महला पहला श्लोक। मच्छी तारू क्या करे, पंखी क्या आकाश। पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या करवास। कुत्ते चंदन लाई है पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाई है पढ़िया समर्थ पाठ। अंधा चानन रखिए दीवे बले पचास, चौने सोना पाईए चुन चुन खावे कास। लोहा मारन पाईए टह ना होए कपास, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश। महला पहला। कहा कंचन तुटे सार, अग्नि गंड पाए लोहार। गोरी सेती तुटे पतार, पुत्ती गंड पवे संसार। राजा मंगे दिते गंड पाए, भुखिया गंड पवे जा खाए। काला गंड नदियां मीह चोल, गंड प्रीति मिठे बोल। बेदा गंड बोले सच कोए, मोया गंड नेकी सत होए। एत गंड वरते संसार, मूर्ख गंड पवे मोह मार। नानक आखे हो बिचार, सिफती गंड पवे दरबार। पौड़ी आपे कुदरत साज कै, आपे करे बिचार। एक खोटे एक खरे आपे परखणहार। खरे खजाने पाईए खोटे सटिए बार वार। खोटे सच्ची दरगह सुटिए किसे आगे करे पुकार। सतगुर पिछे भज पवै एहा करनी सार। सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार। सच्ची दरगह मनियन गुर कै प्रेम प्यार। गणत तिना दी को क्या करे, जो आप बख्शे करतार। श्लोक महला पहला। हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाए कराया, मेर वद बाद सहा अफजू खुदाए। एक तू ही महला पहला। ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साध का तरा। अस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला। ना दादे देहांदे आदमी, ना सबत जेर जिमी। अस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नह जलो। अन्न पावन थिर ना कोई, एक तुई महला पहला। ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे। अस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला। परंदे ना ग्रह जर, दरख्त आव्यास कर। देहंद सुई एक तुई महला पहला। नानक ललार लिखिया सोए, मेटना सकै कोए।
कला धरै हिरै सुई एक तुई पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमति आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशाणिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम पुलाणिया विष्टा अंदर वास साधना जानिया विण नावें दुख पाए आवन जानिया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया सलोक महला पहला सिंह बाजा चरगा कुहियां इन्हां खवाले।

राजा राजना तृप्तया सायर परे किसको नानक सचे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा नेह फलंग तस जन्मस जावद ब्रह्म ना बिंदते सागरंग संसारस गुरप्रसादी तरह के कारण कारण समर्थ है कहो नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार पौड़ी खसम कै दरबार ढाडी वसया सचा खसम कलाण कमल विगसया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसया सचा सतगुर सेवनो सचा मार्ग दसया सचा शब्द विचार काल विधंसया ढाडी कथया काथो शब्द सवारया नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारया श्लोक महला पहला खत्यो जम्मे खते कार नित खत्या विच पाहे तोते मूल न उतरै जेसौ तोवन पाहे नानक बख्से बख्सीऐ नाहे ता पाही पाहे महला पहला नानक बोलन चखना दुख छड मंगिए सुख सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख जिथे बोलन हारिए तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरख्या लख सिरज निहालिया उजड़ पुले राह गुर वेखा लिया सतगुर सच्चे वाहो सच समालिया पाया रतन कराहो दीवा बालिया सच्चे शब्द सलाहे सुखिए सच वालिया नेडरिया डर लग गर्भ से गालिया नावो पुला जग फिर बेता लिया श्लोक महला तीजा पै विच जमै पै मरै पी पौ मन मै होए नानक पै विच जे मरै सहला आया सोए महला तीजा पैवन जीवै बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक पैवन जे मरै मोहे काले उठ जाए पौड़ी सतगुर होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुर होए दयाल ना कबहू चूरी है सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानी है सतगुर होए दयाल ता हर रंग माणी है सतगुर होए दयाल ता जम का डर केहा सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख देहा सतगुर होए दयाल ता नव निध पाईए सतगुर होए दयाल ता सच समाईए श्लोक महला पहला सिर खोहाए पीए मलवाणी जूठा मंग मंग खाही फूल फदिहत

जय कारण तट तीर्थ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही। पड़ पट पंडित बाद वखाण है, भीतर होंदी वस्त न जाण है। हो ना मुआ मेरी मुई बलाए, ओह ना मुआ जो रया सुमाए। कहो नानक गुर

गुरमत दे परोसै तेरै, तन मह मैल नाही मन राता, गुरबचनी सा शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला। जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया, अनपै विसरे नाम समाया, क्या डरिया डर डरै समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना, रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास, सह सुभाए मिले साबास, जाहे सवारै सांझ ब्याल, इत उत मनमुख बांधे काल, अहनिसरा

तीन अवस्था कह वखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुत जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई, बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कह हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक

बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन ना मैं दुखिया चलिया रोए। रसना हरस चाखिया सह सुभाए, गुर कृपा ते सच समाए। साचे राती गुरशब्द विचार, अमृत पीवै निर्मल तार। नाम समावै जो पांडा होए, ऊंदे पांडै टिकै ना कोए। गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जे शब्द प्यास। गौड़ी गुआरे री महला तीजा, एक गावत रहे मन साध ना पाए। हम मैं विच गावे बिरथा जाए, गावन गावे जिन नाम प्यार। साची बाणी शब्द विचार, गावत रहे जे सतगुर पावे। मंतन राता नाम सुभावे रहाओ। एक गावे एक भगत करे, नाम ना पावे बिन असनेह। सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना पर राखिया सदा और तार। भगत करै मूर्ख आप जनावै, नच नच टपै बहुत दुख पावै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए। मेरा प्रभ साचा सब जाने, नानक बख्शे नाम पछाणे। गौड़ी गुआरे री महला तीजा,

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जीव वडाणी चाकरी लाया, महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नव निद पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए, हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सही समावे सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन मुखियंदा आवै जाए, हर हर नाम देवे जन सोए, अंदर भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावे सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावे कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै से महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हम मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिले वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करे आचार, बिन नामै त्रिग त्रिग हंकार, बंधन बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे, तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए, गुर का शब्द ना चीने ओ फिर जो नी पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए, अंदर भक्ति रतिया हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए हों मैं तजे विकार, जन नान करमी पाईया नु हर नामा भक्त भंडार। गौड़ी बैरागण महला तीजा पे अड़ा दिन चार है, हर हर लिख पाया सो बावंती नार है। गुरमुख गुण

सारी। ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर रहाओ। हरे आपे शब्द सुरत धुन आपे, हरे आपे वेखै विकसै आपे, हरे आप जपाए आपे हर जापे। हरे आपे सारंग अमृत तारा, हर अमृत आप ही आवनहारा, हरे आप करे आपे निस्तारा। हरे आपे बेड़ी तुलहा तारा, हरे आपे गुरमति निस्तारा, हरे आपे नानक पावे पारा, गौड़ी बैरागण महला चौथा। साओ हमारा तू तनी, जैसी तू रास दे तैसी हमले, हर नाम जय रंग स्यों जे आप दयाल होए दे। हमन जारे राम के हर वणज करावे, दे रासरे रहाओ। लहा हर भगतन खटिया, हर सच्चे सा मन पाया, हर जप हर वखर लद्या, जम जा गाती नेड़ ना आया। होर वणज करै वापारिये, अनंत तरंगी दुख माया, ओए जिहै वणज हर लाया।

हमें अपराध पाप भव कीने, कर दुष्टि चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजा सबदा नहद। गुरमत मनुआ गावे, वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन धन गुरु लिवलावे, गुरमुख हर लिवलावे। रहाओ हमरा ठाकर सतगुर पूरा, मन गुर की कर कमावे। हम मलमल धोवे पाप गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायण, जेवा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर रस आगे।

जन नानक कौ हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावै। तू जप नाम करमा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोख पिता कर गुरपुरख्या जन्मा वडभागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो मेरा मन तनु हर रंग भिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा वे संगत नाम सदा लै लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखियाड़े तुरकर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत वुठड़ा मिलिया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामन करीहा जियो मिल संत जना रंग माण रलिया जियो गुरदीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर तुठ टोल टोल मिलिया जियो मेरा मंत्र प्रेम लगा हर ढोले जियो मैं मेले मित्र सतगुर वे चोले जियो मन देवा संता मेरा प्रमेले जियो हर विटड़ियो सदा कोले जियो वस मेरे प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जियो मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपूरा वेख विगस जियो हर नाम मिलिया सुहागणी मेरे गोविंदा मन अनदिन अनदर हस जियो हर पायाड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लै लाहा मन हस जियो हर आपो पाए हर आपे वेखे हर आपे कर लाया जियो एक खावे बख्स तोट ना आवे एक ना फुका पाया जियो एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक ना पिख मंगाया जियो सब एको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपूरा लख लखाही जियो हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दाल दो दुख लह जाही जियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही जियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो मेरा मन तन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो तन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रहनी जियो मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मंत्र भुख लगाइया जियो हौ रह ना सकौ बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मंत्र आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वधाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हां तुद विटड़िया सदवारी जियो मेरा मंत्र प्रेम प्रम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुर विष्ट मेल मेरे गोविंदा हर मेले कर रहे बारी जियो हर नाम दया कर पाया मेरे गोविंदा जन नानक शरण तुम्हारी जियो गौड़ी माज महला चौथा चोजी मेरे गोविंदा चोजी मेरे प्यारिया हर प्रभ मेरा चोजी जियो
हरे आपे कानो पाईंदा मेरे गोविंदा, हरे आपे गोपी खोजी जियो। हरे आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा, आपे रसिया भोगी जियो। हर सुजानना भुले मेरे गोविंदा, आपे सतगुर जोगी जियो। आपे जग तो पाईंदा मेरे गोविंदा, हरे आप खेले बहुरंगी जियो। एक ना भोग भोगाईंदा मेरे गोविंदा, एक नगर फिरै नंग नंगी जियो। आपे जग तो पाईंदा मेरे गोविंदा, हर दान देवै सब मंगी जियो। भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा, हर कथा मंगै हर चंगी जियो। हर आपे भगत कराईंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो। आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रव रहया नहीं दूरी जियो। हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो। हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखा आप है दूरी जियो। हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा, हर आप वजाए त्यों वाजे जियो। हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुरसबदी हर प्रभ गाजै जियो। आपे शरण पवाईंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजै जियो। वडभागी मिल संगति मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिद्ध काजै जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरह लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो। मेरा नाम सखा हर भाई जियो, गुण गावो संत जियो। मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो, फिर बहुना पवजल फेरे जियो। क्यों हर प्रभ वेखा मेरे मंत्र चाओ जियो, हर मेलो संत जियो मन लगा पाओ जियो। गुरसबदी पाई है हर प्रीत मराओ जियो, वडभागी जपनाओ जियो। मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो, हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो। सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जियो। मन अंदर अमृत गुरमत हर लीवा जियो, मन हर रंग रतड़ा हर रसदा पीवा जियो। हर पायड़ा मन जीवा जियो, मेरा मंत्र प्रेम लगा हर बाण जियो। मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो, गुरमेले संत हर सूर सुजान जियो। हाउ नाम विटो कुरबान जियो, हाउ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो। हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो, सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो। हर नामे नाम समाई जियो, मैं वेदन प्रेम हर बिरो लगाई जियो। गुरसरदा पूर अमृत मुख पाई जियो, हर हो दयाल हर नाम तिहाई जियो। जन नानक हर रस पाई जियो। महला पंजवा, राग गौड़ी गुआरेरी चौप दे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन विद कुशल होत मेरे भाई। क्यों पाई है हर नाम सहाई रहाओ, कुशल ना ग्रह मेरी समाया। उच्चे मंदिर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती घोड़े देख विगासा, लश्कर जोड़े नेम खवासा। गल जेवड़ी हम मैं के फासा, राजकुमावै दे दे सारी। माने रंग भोग बहुनारी, ज्यो नरपत सुपने पेखारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किश करे सो हर क्या भगता पाया। जन नानक हो मैं मार समाया, इन विद कुशल होत मेरे भाई। ओ पाईए हर नाम सहाई रहाओ दूजा। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा,
ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੀਐ ਭ੍ਰਮ ਕਿਸਕਾ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਜਲ ਥਲ ਮਹਿਲ ਰਵਿਆ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਮਨਮੁਖ ਪਤ ਖੋਈ, ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਆਪ ਰਾਮ ਦਾ ਯਾਰਾ, ਤਿਸ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਕੋ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਇਕ ਅਨੰਤਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਖ ਸੋ ਹੋਇਆ ਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੈ ਜੋ ਵਰਤਨਤਾ। ਮਨਮੁਖ ਮੋਏ ਜਿਨ ਦੂਜੀ ਪਿਆਸਾ, ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਵੈ ਤੁਰ ਕਿਰਤ ਲਿਖਿਆ ਸਾ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਤੈਸਾ ਖਾਸਾ। ਦੇਖ ਦਰਸ ਮਨ ਪਇਆ ਵਿਗਾਸਾ, ਸਭ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਖਰ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ ਰਹਾਉ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਸਾ ਕਰ ਉਪਾਇਆ, ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਭਰਮਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮਤ। ਤਿਆਗ ਮਾਨ ਝੂਠ ਮਾਨ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਦਰਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਵਾ ਸੋ ਤੁਜਤੇ ਹੋਗ, ਅਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਨੈ ਜੋਗ। ਤਾਂ ਮਿਲੀਐ ਜਾਂ ਲਹਿ ਮਿਲਾਏ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰਮ ਭੂਮੈ ਬੋ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰਾ ਕਾਮ, ਫਲ ਪਾਵੈ ਮਿਟੈ ਜਮ ਤਰਾਸ, ਨਿਤ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਜਾਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਧਾਰ, ਸੀਗਰ ਕਾਰਜ ਲਿਹੋ ਸਵਾਰ ਰਹਾਉ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਹੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਤਿਆਗ, ਸੰਜਨਾ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ, ਸਰਬ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈ ਹਾਥ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ। ਉਪਾਵ ਛੋੜ ਗਹੋ ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਹੋਵੈ ਤੇਰੀ ਛੋਟ, ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਕਰ ਤਿਸਨੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤਕਰਮਾਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਾਵੋ ਆਪ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਾਪ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਅਬਨਾਸੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕੱਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਰਚੈ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੈ ਕਾਮ, ਸੰਤ ਕਾ ਕੀਆ ਸਤਕਰਮਾਨ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਅਟਲ ਅਸ਼ੇਦ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕੱਟੇ ਪਰਮਭੇਦ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜੀ ਕੈ ਸਾਥ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਨਰਕ ਨਾ ਪਵੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਵੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਰ, ਜੇ ਜਨ ਹੋਏ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਤੇ ਰਤਨ, ਗਰਭ ਮੈਂ ਰਾਖਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਜਤਨ, ਜਿਨ ਦੀਨੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਆਠ ਪਹਿਰ ਧਿਆਈ, ਰਮਈਆ ਰੇਨ ਸਾ ਜਨ ਪਾਵੋ, ਗੁਰਮਿਲ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਧਿਆਵੋ ਰਹਾਉ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮੂੜ ਤੇ ਬਗਤਾ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਬਿਸੁਰਤ ਤੇ ਸੁਰਤਾ, ਜਿਸ ਪਰ ਸਾਧਨ ਮੈਂ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਸੋ ਭ੍ਰਮਣ ਤੇ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਨਿਥਾਵੇਂ ਕਉ ਥਾਨ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਮਾਨ, ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਸਭ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਸਿਮਰੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਇਆ ਸਿਲਕ ਕਾਟੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ ਖਾਟੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ ਕੌਸਾਲਾ ਹੀ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣ ਨਾਹੀ ਭਉ ਸੋਗ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਗ। ਤਜੀ ਸਿਆਣਪ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਿਕਾਰ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੱਖਣ ਹਾਰ,
ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰੰਗ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਰਹਾਓ। ਤਿਸ ਕੀ ਟੇਕ ਮਨੈ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖ, ਅਵਰ ਯਤਨ

हर हर नाम जब जंतार्यो अग्न सागर गुर पार उतार्यो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भये जन्म जन्म के किलवख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहो सब जाए। गुर पूरै सब भ्रम चुकाया हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बंद लक खरे। जे तंदे मैं ओए लपटाए उनते दुगड़ दिड़ी उनमाए। ओह बेला का चीत न आवै बिनस जाए ताहू लपटावै रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए मीठी कर कर बिख्या खाए। हों बंदा हों साधो बैर हमरी भूम कौन काले पैर। हों पंडित हों चतर सियाणा करने हर न बुझे बिगाना। अपनी गत में ते आपे जान क्या को कह क्या आख बखान। जित जित लावे तित लगना अपना भला सब काहू मंगना। सब किश तेरा तू करने हार अंत नाही किश पारावार। दास अपने कौ दी जैदान कबू ना विसरै नानक नाम। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा। आनक जतन नहीं होत छुटारा बहु सियाण पे अगल पारा। हर की सेवा निर्मल हेत प्रभ की दरगह शोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का उला तुझे ना लागे ताता झोला रहाओ। जो बोहित पैसा गरमाहे अंधकार दीपक दीपाहे। अगन सीत का लास दुख नाम जपत मन हो सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जसे आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा। बहुत दर्ब कर माना या गाना अनक रूप देखने पतियाना। पुत्र कलत्र उर ज्यो जान मेरी ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी। बिन हर भजन देखो बिल्लाते त्रिग तन माया संग्राते रहाओ। ज्यो बिगारी कैसर दी जय दाम ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा नेत्र पसारै तन निरार्थ काजा। ज्यो राखा खेत उपर पराए खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़ै तिसकै पालै कछु ना पड़ै। जिसका राज तिसै का सुपना जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिनाहे आप

साध संकै नाही नेर, लख चौरासी प्रमता फेर, एकै जल फहाए पंखी, रस रस को करै बोरंगी। कहो नानक जिस पै कृपाल, गुरपुरै ताके काटे जाल। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, तो कृपा ते मार्ग पाई है, प्रभ कृपा ते नाम ते आई है। प्रभ कृपा ते बंधन छुट है, तो कृपा ते हम मैं तुट है। तुम लावाओ तो लागे सेव, हम ते कछु ना होवे देव रहाओ। तुद भावे ता गावा बाणी, तुद भावे ता सच वखाणी। तुद भावे ता सतगुर मया, सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद भावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सत धर्मा। सर्व निदान

नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नानक कर जाता। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधु, चखत होए रह बिस्मादु, अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ, आन न सुनिए कत हूं जाइय, साध संगत वडभागी पाइय, आठ पहर जेहवे आराध, पार ब्रह्मो ठाकर आगाद, इहा उहा सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोडे, आन ना रस कस लवे ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मदे बस्त्या पार, इस ही पितर सुनियत साहो, कौन बापारी जा कहुआ विसाहो। नाम रतन को ब्योहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ। मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय।

तहां तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नवनिध तू पंडार, रंग रसा तू मन आधार। तू मेरी शोभा तुम संगरचिया, तू मेरी ओर तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सतगुर ते दृढ़ केक, नानक दास हर हर हर टेक। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, व्यापत हरक सोग विस्तार। व्यापत स्वर्ग नर के अवतार, व्यापत धन निरतन पेक शोभा। मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संत जीव प्रभु उठ तुम्हारी रहाओ। व्यापत अहम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मद मस्ता। व्यापत भूम रंग कर रंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज मैल सिंगार, पाई दूध व्याप्त अंधियार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त हे जात, सब किश व्याप्त बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहा व्यापे माए। कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निकट न आवे माई। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, नैनो नींद पर दृष्ट विकार। सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लो मीठा साद। मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। सावत वस्तु अपनी लहर रहाओ। सगल सहेली अपने रस माती, गृह अपने की खबर ना जाती। मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। उनते राखे बाप ना माई, उनते राखे मीत ना पाई। दर्ब से अणप ना होए रहते, साह संग दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहे सारिंग पाण, संतन तूर सर्व निधान। सबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म कै रंग। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी सब धन माल। रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, जा कै वस खान सुल्तान। जा कै वस है सगल जहान, जा का किया सब किश होए। तिसते बाहर नाही कोए, कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे। काज तुम्हारे दे निवाहे, रहाओ सब ते ऊच जा का दरबार। सगल भगत जा का नाम आधार। सर्व व्यापत पूर्ण धनी, जाकी शोभा कड़कड़ बनी। जिस सिमरत दुख डेरा टहै, जिस सिमरत जम किशु नाम कहै। जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, सतगुर दर्शन यज्ञ निवारी। सतगुर पेड़ तहु मैं मारी, सतगुर संग नाही मंडोलै। अमृत बाणी गुरमुख बोलै, सब जग साचा जा सच मैं राते। शीतल सांत गुर ते प्रभ जाते, रहाओ। संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ। संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म। साध कृपाल दयाल गोबिंद, साधा मैं अमरी जिंद। कृपा निध कृपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो। मोहे निर्गुण कहो प्रभ की नी दया, साध संग नानक नाम लया। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, साध संग जप्यो भगवंत। केवल नाम दियो गुरमंत, ताजा मान पै निर्वैर। आठ पैर पूजो गुर पैर, अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी। जब ते सुनिया हर जसकानी, रहाओ। सहज सुखिया नंद, असहज सुखिया नंद निदान। राखण हार रख ले निदान, दुख दर्द बिन से पै परम। आवन जान रखे कर।

मन हट जल जाइए, प्रे संग ना पावे बहु जोन पवाइए, सील संजम प्रयाया गया मन, तिस नारी कहो दुख ना जमान, कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जानिया, तन सती दरगह परवानिया, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, हाव तन मन तो पालक सच नाए, हर गुण गावे सही सुभाए, रहाओ पियू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना, अर्तन लाल जाका कछु ना मोल, परे पंडारा खूटा तोल, खावे खर्चे रल मिल पाई, तोट ना आवे वद दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लिया रलाए, गौड़ी महला पंजवा, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चुका देखिया भरपूर, सतगुर अपने कहो बलिहार है, छोड़ ना जाई सर परतार है, रहाओ दुख रोग सोग बिसर जब नाम, सदा आनंद जा हर गुणगाम, बुरा भला कोई ना कही जय, छोड़ मन हर चरण कही जय, कहो नानक गुरमंत्र चितार, सुख पावे साचा दरबार, गौड़ी महला पंजवा, जाका मीत सजन है समिया, तिस जन कहो कहो का की कमिया, जा की प्रीत गोबिंद स्यों लागी, दुख दर्द प्रमता का भागी, रहाओ जा कहो रस हर रस है आयो, सो अनरस नाही लपटायो, जा का कहया दरगह चल है, सो किसको नजर लाया वह तल है, जा का सब किता का होए, नानक ता कहो सदा सुख होए, गौड़ी महला पंजवा, जा कै दुख सुख सम कर जापै, ताको काड़ा कहा ब्यापै, सहजर अंदर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राए, रहाओ जा कै चिंतवस है मन आए, ताको चिंता कत हू नाहे, जा कै बिरस्यो मन ते भरमा, ता कै कछु नाही डर जमा, जा कै हृदय दियो गुरनामा, कहो नानक ता कै सगल निदाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन मैथाना, गुरप्रसाद किने विर लै जाना, सहज कथा के अमृत कुंटा, जिसे प्राप्त तिस लै पुंचा, रहाओ अनहत बाणी था निराला, ताकि तुन मोहे गोपाला, तै सहजा खारे अनेक अनंता, पार ब्रह्म के संगी संता, हर ख्यानंत सोग नहीं बिया, सो कर गुर नानक कौ दिया, गौड़ी महला पंजवा, कवन रूप तेरा आरा दो, कवन जो काया लेसा दो, कवन गुण जो तुझ लै गावो, कवन बोल पार ब्रह्म रिझावो, रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो, कवन सो बेद जित भव जल तरो, कवन तापो जित तपिया होए, कवन सो नाम हम मैं मल खोए, गुण पूजा ज्ञान ध्यान, नानक सगल काल, जिस कर कृपा सदगुर मिले दयाल, तिस ही गुण तिन्ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुखदाता, रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, आपन तन नहीं जा को गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं का को लपटायो, आपन नाम सदगुर ते पायो, रहाओ सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आ बाप ना माई, सोना रूपा फुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुर बख्श मिलाया, तिसका सब किश जिसका हर राया, गौड़ी महला पंजवा, गुर के चरण उपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे, सतगुर अपने कहो कुर्बानी, आत्म चीन परम रंग

पिता महाराज अंतर्जामी समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दास तुम ठाकर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवा जा को तुम पै समर्थ अंगा ताको कछ नाही का लंगा माधो जा को है आस तुम्हारी ताको कछ नाही संसारी रहाओ जा कै हृदय ठाकर होए ताको सहसा नाही कोए जा को तुम दीनी प्रभ धीर ताकै निकटण आवै पीर कहो नानक मैं सो गुर पाया पार ब्रह्म पूर्ण देखाया गौड़ी महला पंजवा दुलभ देह पाई वडभागी नाम न जपै ते आत्म घाती मर न जाही जिन्ना बिसरत राम नाम बिहुन जीवन कौन काम रहाओ खात पीत खेल तो हस्त विस्थार कवन अर्थ मृतक सिंगार जो ना सुने जस परमानंदा पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया केवल नाम रिदमहे समाया गौड़ी महला पंजवा काकी माई काको बाप नाम तारीक झूठे सब साक काहे को मूर्ख पखलाया मिल संजोग हुक्म तू आया रहाओ एका माटी एका जोत एको पवन कहां कौन रोत मेरा मेरा कर बिल्ला ही मरण हारे हो जियरा नाही कहो नानक गुर खोले कपाट मुक्त पै बिन से ब्रह्म थाट गौड़ी महला पंजवा वड़े वड़े जो दिसै लोग तिनको व्यापै चिंता रोग कौन वड़ा माया वड़ियाई सो वड़ा जिन राम लिवलाई रहाओ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै कहो नानक क्यों तत् बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा गौड़ी महला पंजवा पूरा मार्ग पूरा इसनान सब कुछ पूरा हृदय इनाम पूरी रही जा पूरा राखी पार ब्रह्म की शरण जनता की रहाओ पूरा सुख पूरा संतोख पूरा तप पूर्ण राजयोग हर कै मार्ग पतत पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सदवसै हदूरा कहो नानक मेरा सदगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा संत की तूर मिट अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट संत का दर्श पूर्ण स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत का संग मिटया अहंकार दृष्टया वै सब एक अंकार संत सो प्रसन्न आए वसपंचा अमृत नामृत लै संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल प्रगास है हर सिमरत त्रा सबनास है सा मत पूरी जित हर गुण गावै वड्डे पाक साधु संग पावै रहाओ साध संग पाई निदनामा सा संग पूर्ण सब कामा हर की भगत।

गुर का शब्द तेरा संग सहाई, दयाल पाए सगले जी पाई, गुर पूरा जब कृपा करी, पंत नानक मेरी पूरी परी। गौड़ी महला पंजवा, अनक रसा खाए जैसे ढोर, मुहकी चेवरी बांध्यो चोर। मृतक देह सा संग बिहुना, आव जात जोनी दोखीना रहाओ। अनक बस्तर सुंदर पहराया, जो डरना खेत महे डराया। सगल शरीर आवत सब काम, नेफल मानख जपै नहीं नाम। कहो नानक जा कहो भय दयाला, सा संग मिल पजै गोपाला। गौड़ी महला पंजवा, काल कलेश गुर शब्द निवा।

अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव। सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आसा, करी दया सदगुरु गुणतासा। दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फरमाए। इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक तेजन सफल फले। गौड़ी महला पंजवा, ताप गए पाई प्रभ सांत। शीतल पए कीनी प्रभदात, प्रभ कृपा ते पए सुहेले। जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ, सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ। सगल रोग का बिरस्या थाओ, सहे सुभाए बोले हर बाणी। आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी, दुख दर्द जम निर्णय आवै। कहो नानक जो हर गुण गावै। गौड़ी महला पंजवा, पले दिनस पले संजोग। जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग, ओह बेला को हम बल जाओ। जित मेरा मन जपै हर नाओ रहाओ, सफल मूर्त सफल ओह करी। जित रसना उचरै हर हरी, सफल ओह माथा संत नमस्कार। सो चरण पुनीत चले हर मार्ग, कहो नानक भला मेरा।

आहे नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन भगवंत नाही अनकोए, मारा राखै एको सोए रहाओ, गुर के चरण हृदय उरतार, अग्न सागर जप उतरै पार, गुर मूर्त स्यों लाए ध्यान, इहां उहां पावै मान, सगल त्याग गुर सरनी आया, मिटया देसे नानक सुख पाया, गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसै मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी, रहाओ इकस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्ट सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक, हर हर अखर मन मैं लेख, रभ रहे आ सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा, पै मैं रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम आधारा, पौ ना व्यापै तेरी सरना, जो तुद पावै सोई करना रहाओ, सोग अर्ख मैं आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रपाणा, अग्न सागर महाव्यापै माया, से शीतल जिन सतगुर पाया, राख ले प्रभ रखण हारा, कहो नानक्या जंत विचारा, गौड़ी महला पंजवा, तुमरी कृपा ते जपिए ना, तुमरी कृपा ते दरगै था, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं।

हर सिमरत पूर्ण पद पाया, साह संग पै परम मिटाया, जात कत देखो तत रहया सुमाए, नानक दास।

चरण कमल हृदय उरधारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी। सफल जन्म होवे प्रमाण, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान। संत धूर पाई एवड भागी, नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवां, करै दोह कर्म दिखावै होर, राम की दरगह बांधा चोर। राम रमै सोई रामाणा, जलथल महियल एक समाणा रहाओ। अंतर बेख मुखे अमृत सुनावै, जंपर बांधा चोटा खावै। अनक पड़दे मैं कमावै वेकार, खिन मैं प्रगट होए संसार। अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस कृपाल विधाता। गौड़ी महला पंजवां, राम रंग।

संतै संग बैस गुण गाए ताका रंग न उतरै जाए। बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया आन रंग फीके सब माया। गुर रंगे से पए निहाल कहो नानक गुर पए है दयाल। गौड़ी महला पंजवा सिमरत स्वामी किल विखनासे सुख सहज आनंद निवासे। राम जना कौ राम भरोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ। साध संग कश

कहो नानक मन भई परतीत, निर्मल जसपी वै जननीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा। हर धन को व्यापारी पूरा, जसै नवाजे सो जन सूरा। रहाओ जा को भय कृपाल गुसाई, से जन लागे गुर की पाई। सुख सहज सांत आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा। नाम रास साध संखाटी, कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत समट कलेस, चरण कमल मन में प्रवेश। उचरो राम नाम लखबारी, अमृत रस पीवो प्रप्यारी। रहाओ सुख

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन लै जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दै वसै भगवान, कहो नानक सही जन पू

साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाईए मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत, प्रम बिन से गाए गुणनीत। ऊठत सोवत हर संग पहरुआ, जा कै सिमरन जमने डरुआ। रहाओ चरण कमल प्रभुदय निवास, सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तन एक, साचे साह की मन में टेक। महा गरीब जन साध्या नाथ, नानक प्रभु राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे। रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिख संसार। कर किरपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ शरण आई जिन हर जाते, मन तन शीतल चरण हर राते। पै पंजन प्रभ माना बसाही, डरपत डरपत जन बहुत जाही। रहाओ जा कर दे बस्यो हर नाम, सगम मनोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास, सो समरथ सिमर सास गिरास। मीत साजन

गई ब्याद उबरे जनमीत मन बच कर्म प्रव अपना त्याई नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा नेत्र प्रगास किया गुरुदेव परम गए पूर्ण भई सेव रहाओ शीतला ते रखिया बिहारी पार ब्रह्म प्रव कृपा तारी नानक नाम जपै सो जीवै साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा तान्यो मस्तक।

तेनी उपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्वाण, गौड़ी महला पंजवां, तू है मसलत तू है नाल, तू है राख है सार समाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ, आगे आप एहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जापे, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करे फुरमान, आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवां, सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल, राम रवत सदी सुख पाया, मया करी पूर्ण हर राया रहाओ, कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग, गौड़ी महला पंजवां, धोती खोल विछाए हेठ, गर्दप वांगू लाहे पेट, बिन कर तूती मुक्त ना पाईऐ, मुक्त पदार्थ नाम त्याईऐ रहाओ, पूजा तिलक करत इशनाना, छुरी काड लेवै हथ दाना, वेद पढ़ै मुख मीठी बाणी, जिया कुहत ना संगै प्राणी, कहो नानक जिस कृपा धारै, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचारै, गौड़ी महला पंजवां, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सदगुर तुमरे काज सवारे रहाओ, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपा होए पजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवां, हर संगराते पाहे ना जलै, हर संगराते माया नहीं छलै, हर संगराते नहीं डूबै जलाओ, हर संगराते सुफल फलाओ, सब पै मिटै तुम्हारे नाए, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संगराते मिटै सब चिंता, हर स्यों सो रचै जे साधका मंता, हर संगराते जम की नहीं त्रास, हर संगराते पूर्ण आस, हर संगराते दुख ना लागे, हर संगराता अंदन जागे, हर संगराता सहज कर वसै, हर संगराते परम पौ नसै, हर संगराते मत उत्तम होए, हर संगराते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवां, उद्यम करत

खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाए, सुख पाया लगदा सह पाए। आप गया ता आपै पए, कृपा निदान की सरणी पए। जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्त्र पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इसनान। लाख अरब खरब दीनो दान, जामन वस्यो हर को नाम। सगल पवित गुण गाय गोपाल, पाप मिटाए साधु शरण दयाल। रहाओ बहुत बहुत उर्द तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभु स्यो मन माने। आगाध बोध हर अगम्या पारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे। नानक प्रभु कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरुदेव बसाया। गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, तिसे आराध मेरा मन धीरा। रहाओ आन दिन जपो गुरु गुरनाम, ताते सिद्ध पए सगल काम। दर्शन देख शीतल मन पए, जन्म जन्म के किलबिख गए। कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवकी आपै रखाई। गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवको आप सहाई। नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए। करन करावन पूर्ण सज सोए, रहाओ आप मन बसिया करना हारा। पै बिरसे आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे। जन्म जन्म के किल बिखलाथे, कह ना जाए प्रभ की वडियाई। नानक दास दा शरणाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा। दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूर्ण भाई। ताते बिरथा ना व्यापै काई, रहाओ जो जो चितवै दास हर माई। सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रपत गवाई। नानक हर गुण निरपौ गाई, गौड़ी महला पंजवा। पुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गर्त परत गए लेहो अंगुरिया। रहाओ श्रवणन सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीना नाथ अनाथ करना मैं, साजन मीत पिता मैं तरिया। चरण कवल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दै गुसाई मीतला, तू संग हमारे बास जियो। रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुख

मात पिता सुतबंध पो तू मेरे प्राण आधार, साध संग नानक भजै बिखतरिया संसार। गौड़ी बैरागण रहोए के संत के घर, महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। है कोई राम प्यारो गावै, सर्व कल्याण सुख सच पावै रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले कहूं एक लिव लागी। जिन हर पाया सेवट भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै, जोगी जति सिद्ध हरिया है। जिसे प्राप्त सो हर गुण गा है, ताकि शरण जिन बिसरत नाही, वड़ भागी हर संत मिला।

करो दास दासन की अनक पान तिस करो निहोरा तुला तहार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा आनंद सुख पेट तहर नानक जन्म कृतार्थ सबल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सह सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई एक बस बिन पंच दुहेले ओ बसदा गोचर ठाई जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई अन क्यों पाव करे नहीं पावै बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिव लाई पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक पे

हर नाम नो सागर लहर संसा संसार गुरबोध पार ग्राम नो रहाओ। काल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिखिया बसरियत कनी उबरे जप जप हर गुनी। मतवारो माया सोया गुर भेट परंपो खोया कहो नानक एक ते आया कट कट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक सेवा थारी गुर है टेक रहाओ। अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर लै लाया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या। बख्शीस वजो मिले एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुखी उजले गौड़ी महला पंजवा। जिया रे ओला नाम का अवर जे करन करावनो तिन मैं पाओ है जाम का रहाओ। अवर जतन नहीं पाई है वड़े पाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है या गै तिल नहीं मानी है। अहु बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा कर नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा बार न बलिहार न लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अदरिया रहाओ। कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जो

शरण पर्यो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते हो मन हो रै रहाओ। अज्ञानी मानख पाया, जो नाही सोलो रै। रैन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित पोरे। प्रम तो हारिया, अनक विधि कर टोरे। कहो नानक कृपा पई, साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मैं रहाओ। दीन दयाला पार ब्रह्मो, जा कै सिमरन सुख पए। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खए। कृपा नित प्रमया तार, नानक हर हर नाम ले। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जा दिन बिसरे प्राण सुखदाता, सो दिन जात आ जाए रहाओ। एक रैन के पाहुन तुम आए, बोजुग आस बधाए। गृह मंदिर संपै जो दिसे, जो तरवर की शाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरो ठाकरो, खिर मैं होत पर आए। पहरे बागा कर इशनाना, चोवा चंदन लाए। निरपो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यो हस्ती ना वाए। जो होए कृपाल ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए। मुक्त पाया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलिहारिय रहाओ। जेते सास ग्रास मान लेता, तेते ही गुण गाई है। जा होए दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद्ध पाई है। मेरे मानो नाम लय जम बनते छूटे, सर्व सुखा सुख पाई है। सेव स्वामी सतगुर दाता, मन वंचित फल आई है। नाम इष्ट मीत सुत करता, मन संग तुहारे चाले। कर सेवा सदगुर अपने की, गुरते पाइये पाले। गुर कृपाल कृपा प्रभ तारी, बिनसे सर्व अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिट्यो सगल कलेसा। राग गौड़ी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ। कोट जोरे लाख करोरे, मन ना हो रे। परे परे ही कौलुजी है। सुंदर नारी अनक प्रकारी, पर गृह बेकारी। बुरा पला नहीं सुजी है, अनक बंधन माया। परमत परमाया, गुण निध नहीं गाया। मन बिखै ही मैं लुजी है। जा कौरे कृपा करे, जीवत सोई मरे। साध संग माया तरे, नानक सो जन दर।

क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो, संता दासी सेवा चरणी जियो। एहो जियो बताई बल बल जाई जियो, तिस निम निम लागौ पाई जियो। पोथी पंडित बेद खो जनता जियो, होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो। गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपौ नाम ते आई जियो। पय कृपाल स्वामी मेरे जियो, पत तपवित लग गुर के पैरे जियो। भ्रम पौ काढ़ किए निरवैरे जियो, गुरमन की आस पुराई जियो। जिन नाव पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो। जिस साधु संगत ते सब सुकरणी जियो, जन नानक सहि समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो। रहन दिन सो सास सास चितारे जियो, संत देव संदेसा पै चरणारे जियो। तुद बिन कित बिन तरिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो। वन त्रिण त्रिपावन सुख परमानंदा जियो, से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो। पेख दर्शन ओ सुख लइए जियो, चरण पखार करी ने सेवा जियो। पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो। बिनो ठाकर पै कहिए जियो, इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो। दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो। एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा। सुन सुन साजन मन मित प्यारे जियो, मन तन तेरा एहो जियो पेवारे जियो। विसर नाही प्राण आधारे जियो, सदा तेरी सरनाई जियो। जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुर प्रसादी सो हर हर पाई जियो। सब किश प्रभ का प्रभ की आ जाई जियो, प्रभ कहो सतबल जाई जियो। एहो निदान जपै वटभागी जियो, नाम निरंजन एक लिव लागी जियो। गुर पूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पहर गुण गाया जियो। रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहो भगत बन जारा जियो। हर तन रास सच वापारा जियो, सरन जन नानक सदबलिहारा जियो। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। तू मेरा बहुमान करते तू मेरा बहुमान, जोर तुम्हारे सुख वसा सत्शब्द निशान। रहाओ सबे गल्लां जातियां सुन के चुपकियां, कद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया। दे बुझारत सारता से अखी डिठड़िया, कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया। एकस दोहो चहो क्या गणी, सब एकत साध मुठी। एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी। भगत सच्चे

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अनस भागो रहाओ। सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता, तिन जग तत् पछाना। उस्त निंदा दो त्यागे, खोजे पद

एक अस्थिर मन अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै ज्यो बादर की शाई, जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवै, अहनिस मगन रह माया मैं कहो कैसे गुण गावै। रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों एह विद्या बंधावै, मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देखता से उठतावै। भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूढ़ ताहे बिसरावै, जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावै। गौड़ी महला नावा साधो एहो मन गहयो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठिन क्रोध कठी के पीतर जेह सुध सब बिसराई,

पत तपुनीत दीन बंद हर शरण काहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नावा को माई भूल्यो मन समझावै, वेद पुराण साध मग सुन करो निमख ना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की वृथा जन्म सिरावै, माया मोह महासंकट बानो तासो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभु तासो नेहो ना लावै, नानक मुक्ता ही तुम मानो जेकट राम समावै। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा, हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुगता है तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औद कटै नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तय अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी, इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन स्यों बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै, और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मो धर रे, पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावै कछु उपाओ मुत का कर रे, नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआरेरी, एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निध सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार, त्रिकुटी छूटी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सूहा रंग माया। नदर पई बिगठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जा गया, शब्द रवै मन हास्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया। पाए बसे जमका पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा, चित हर स्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पथ के आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई ना देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रचो हरनाए, सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति महे समाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना नह पूलो नह परम पुलाना, कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी ग्वारेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्यान, गुर अंकस सच शब्द निशान राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई

नील अनिल अग्न इकठाई जल निवरी गुर बुझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा घर बाहर सो तैसा बैस गुफा मैं आखो कैसा सागर डूगर निरपो वैसा मुवे कहो कहो मारे कौन निडरे कहो कैसा डर कवन शब्द पछाने तिने पौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बुझया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रया समाई निजकर ब्याप रया निठाई उस्त कर है केते मुन प्रीत तन मन सूचे साच सोचीत नानक हर पज नीता नीत गौड़ी गुआरे री महला पहला ना मन मरे ना कार्ज होए मन वस दूता दुरमत दोए मन मन गुरते एक होए निर्गुण राम गुणे वस होए आप निवार बिचारे सोए रहाओ मन भूलो बहुचित विकार मन भूलो सिर आवै भार मन माने हर एक अंकार मन भूलो माया कर जाए काम विरुद्धो रह न ठाए हर पज प्राणी रसन रसाए गैवर हैवर।

व्रतशील संतोखं रोग ना व्यापै ना जम दोखं मुक्त भय प्रभु रूप नारेखं। जोगी को कैसा डर होए रूख बिरख गृह बाहर सोए रहाओ। निरपौ जोगी निर्जन त्यावै अंधन जागै सच लिवलावै सो जोगी मेरे मन भावै। काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्भ निवारे आप तरे पितरी निस्तारे। सतगुर सेवे सो जोगी होए पैरच रह सो निरप होए जैसा सेवै तैसो होए। नर नह केवल निरपौ ना अनाथ है नाथ करे बल जाओ।

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर मैला से सुखाली, एहनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर नेव खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दे वाजे, सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ, ताज कुलै सिर छतर बनावाओ, बिन जगदीश कहां सच पावाओ, खान मलूक कहावाओ राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, हों मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जानिया हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान सियावरे, परपंच ब्या त्या गै कवरे, पाए मिलाए सच सच है सच रे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिलै मल धोई रहाओ, ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत यगन जगत पर जा रै, सो उबरै गुर शब्द विचार है, प्रेंग पतंग कुंचरियार मीना, मिर्ग मरै सह अपना कीना, तृष्णा राच तत नहीं बीना।

काम चितै कामण हितकारी, क्रोध विनाशै सगल विकारी, पतमत खोवै नाम विसारी। पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए। ज्यो तन विधवा पर कौ देई, काम दाम चित पर वसेई, बिन पिर तृप्त ना कभू होई। पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा। ज्यो चात्रक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृपतासा। गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे ना लेखै पावै, वेश करे बहु पसम लगावै, नाम विसार बहुर पछतावै। तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख रहाओ। चोवा चंदन अगर

ही जपना। सहजे भोजन सहजे भाओ, सहजे मिट्यो सगल दोराओ। सहजे होवा साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्म संग। सहजे गृह में सहजो दासी, सहजे दुबदा तन की नासी। जां कै सहज मन भया आनंद, तां को भेटिया परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मैं आत्म रसिया, तां कै संग अबनासी बसिया। सहजे आसन आसर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया। सहजे रोण चुनकार सुहाया, तां कै कार पार ब्रह्म समाया। सहजे जाको पर्यो कर्मा, सहजे गुर पेट्यो सही धर्मा। जा कै सहज भया सो जाने, नानक दास तां कै कुर्बान। गौड़ी महला पंजवा, प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया। पुत्र कलात्र कुटुंब संग जुरिया। भोजन अनक प्रकार बहु कपरे, सर पर गमन करेंगे बपरे। कवन स्थान जो कबो न टरे, कवन शब्द जे दुर्मत हरे। रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नीचल नहीं रहना। शिवपुरी गा होएगा काला, त्रैगुण माया बिरस बिताला। गिरतर तरण

सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग। पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्वस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। खोजत फिरे असंख्य अंत ना पारिया, सेई होए भगत जिन्ना किरपारिया। हों वारिया हर वारिया रहाओ, सुन सुन पंथ डराओ बहुत पैहारिया। मैं तकी ओट संताह लिहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया। गुर निवनु लागौ पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किसी ही ना है हर पूर भंडारिया। चाहो दिस जपिए नाओ सुख सवारिया। मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कुपारिया। मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्व निधान अकत कथारिया। हर दरगह सोभावंत बहाल उडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोलिया पारिया। गुर सेवा पौजल तरिया कहो पुकारिया। गौड़ी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण हर रंग रंगो, जब जेवा हर एक मंगो रहाओ। तज हो मैं गुर ज्ञान भयो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो। जो दिसै सो संग न गयो, सगत मूल लगे पचमोयो। मोहन नाम सदा रव रहयो, कोट मदे कने गुरमुख लयो। हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो। नैन अलोबो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो। काम क्रोध लो मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहयो। दुख अंधेरा करते मिटयो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलयो। जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत तरयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत भरम गए। मेरा मन सब सुख पायो रहाओ। बल तो जल तो तौकिया, गुर चंदन सीत लायो। अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दी पायो। पावक सागर गहरो, चर संतन नाम तरायो। ना हम कर्म ना धर्म सोच, प्रभ गह पूजा अपायो। पाओ खंडन दुख भंजनो, भगत वछल हर नायो। अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो। निर्गुणिया रेकी बेनती, देहो दर्श हर दायो। नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वार आयो। गौड़ी महला पंजवा, रंग संग बिखिया के पोगा। इन संग अंद ना जानी, हौ संचो हौ खाड़ता सगली अवध बिहानी। रहाओ हौ सूरा प्रदान हौ, को नाही मुझै समानी। जो बनवंत्या चार कुलीना, मन में होए गुमानी। ज्यों उलझायो बाद बुद्ध, काम रत्या नहीं बिसरानी। भाई मीत बंद पसखे, पाचे तिन्हू कौ संपानी। जित लागो मन बसना, अंत साई प्रगटानी। अहं बुद्ध सोच कर्म कर, ए बंधन बंधानी। दयाल पुरख कृपा करो, नानक दा दसानी। जुमला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद। राग गौड़ी पूर्वी संत महला पहला, मुंद रहन दुहेलड़िया जियो। नींद ना आवै सा तन दुबलिया जियो, पिर कह आवै तन थी दुबल कंत हावै। केव नैनी देखै सिंगार मिठ रस भोग भोजन, सब चूटक तै ना लेखै। मैं मत जोबन गर्भ गाली, दुधा थनी ना आवै। नानक सातन मिलै मिलाई, बिन पर नींद ना आवै। मुंद निमानड़िया जियो, बिन तनी प्यारे। क्यों सुख पावेगी बिन उरतारे।
ਨਾਹਾ ਬਿਨ ਕਰ ਵਾਸ ਨਾਹੀ, ਪੁੱਛੋ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਨਾਹੀ, ਵਸੈ ਸਾ ਸੁਹੇਲੀਆ। ਸੱਚ ਮਨ ਸੱਜਣ ਸੰਤੋਖ ਮੇਲਾ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਹੁ ਜਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਾ ਧਨੁ, ਨਾਮ ਸਹਿ ਸੁਮਾਣੀਆ। ਮਿਲ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀ ਹੋ ਹਮ ਪਿਰ ਰਾਵੇਹਾ, ਗੁਰ ਪਿਛ ਲਿਖੋਗੀ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੇਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਪਛਤਾਣਿਆ, ਨਿਸ ਜਾਤੋ ਰਹਿ ਅਸਥਰ, ਜਾਮ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਾਚ ਕੀਮਤ ਸਦਾ ਨਉ ਤਨੁ, ਸ਼ਬਦ ਨਿਹੁ ਨਵੇਲੋ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਹਿਜ ਸਾਚਾ, ਮਿਲੋ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਓ। ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਜੀਓ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ, ਮਿਲਵਰ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੈਸੀ, ਮੁੰਦ ਮਨਿਓ ਮਾਹੋ, ਸਾਜਨ ਰਹੰਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਆਪੇ, ਸਾਚ ਜਪ ਸੱਚ ਲਾਹੋ।

पहला सुन नहा प्रभु जियो एकलड़ी बनमा है क्यों तीरेगी ना बिना प्रवे प्रवाहे तन ना बाजो रह ना सके बिखम रहन कनेरिया नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे एकलड़ी कुर लाए नानक सातन मिले मिलाई बिन प्रीतम दुख पाए पिर छोड़ी आड़ी जियो कमन मिलावे रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे शब्दे सुहावे ता पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साज सुहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली ता पिर रावी बिकसी अमृत बाणी नानक सातन ता पिर रावे जा तिसके मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुठी कूड़ियारे क्यों खूले गल जे वड़ा जियो बिन गुरे अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवे पुन दान्या नेक नामन क्यों अंतरमल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हठ निग्रह बेबाणे नानक सच कर शब्द सियापे दुबदा महल के जाने तेरा नाम

भगत लाहा अन दिनो, तिस बाज वखर कोई ना सूजै, नाम ले वो खिन खिनो। परख लेखा नदर साची, करम पूरे पाया, नानक नाम महारस मीठा, गुरपुरे सच पाया। राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा, एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। सात अन बिनो करे जियो, हर के गुण सारे, खिनपन रह ना सके जियो, बिन हर प्यारे रह ना सके, गुर बिन मैल ना पाईए। जो गुर कहे सोई पर की जय, तिसना यगन बुझाइए। हर साचा सोई, तिस बने अवर ना कोई, बिन सेवे सुख ना पाए। नानक सातन मिले मिलाई, जिसनो आप मिलाए। तन रहन सुहिलड़िए जियो, हर स्यो चित लाए, सतगुर सेवे पाओ करे जियो, विचों आप गवाए हर गुण गाए, अंदन लागा पाओ। सुन सखी सहेली जी की मेली, गुर कै शब्द समाओ। हर गुण सारी ता कंत प्यारी, नामे तरी प्यारो, नानक कामन ना प्यारी, राम नाम गलहारो। तन एकलड़ी जियो, बिन नहा प्यारे, दूजे पाए मुठी जियो, बिन गुर शब्द करारे। बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे, माया मोहे खुआई, कूड़ विगुती ता फिर मुत्ती, सातन मैल ना पाई। गुर शब्दे राती सहजे माती, अंदर रहे समाए, नानक कामन सदा रंगराती, हर जियो आ मिलाए। ता मिलिया हर मेले जियो, हर बिन कवन मिलाए। बिन गुर प्रीतम अपने जियो, कौन परम चुकाए, गुर परम चुकाए, इउं मिलिए माए, ता सा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोरे अंधार, बिन गुर मग ना पाए।

पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, पिर बिन नींद ना आवै जियो, कापड़ तन ना सुहाई, कापड़ तन सुहावै जां पिर भावै गुरमती चित लाइयै, सदा सुहागण जां सतगुर सेवे गुर कै अंक समाईऐ, गुर शब्दे मेला ता पिर रावी लाहा नाम संसारे, नानक कामण नहा प्यारी जा हर के गुण सारे, सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हो मैं मारे इन बद मिलो प्यारे, सा धन सोहागण सदा रंग राती साचै नाम प्यारे, अपने गुरमिल रहिया अमृत गहिया दुबदा मारने वारे, नानक कामण हर वर पाया सगले दुख विसारे,

राम नाम वा पाराग म्या पारा गुरमती तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे, हरे आप सवारे आपे भक्ति लाए, आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण गाता गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए।

फिर दोस नाही सुख दाते हाँ विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया धारो कर आवो ना प्यारे। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हाँ सिर अर्पी तस्मीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता शीस सुथान गुर पै संग प्रभु देखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदया पाया दिन रैन रलियां करे कामनु मिटे सगलियां देसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा। मेरे मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर ला लिया आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकरो सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहर को उपजया दूत था गुवाया अनहत वाजे वजह घर मैं पिर संग सिज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया।

संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कमल आरा दी है जम पंथ विखड़ा अगन सागर निमख सिमरत साधी है कल मलै देता शुद्ध करता दिन सरहण आरा दो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दा मोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वछल बिरदाया भगत वछल पुरख पूर्ण मनया चिंदया पाईऐ तम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईऐ सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन धारी करना मैं समरथ स्वामी घट घट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम पारो सरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारो रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल तारी गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला विश्वंपर देवन कौ एक सर्व करै प्रतपाला प्रतपाल महा दयाल दाना दया तारे सब किस काल कंटक लो मोह नासै जी जा कै प्रभसै सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक इच पुन्नी जब दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मल उदम करेहा मनाए लय हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह साधु मंत सखी वस आया पर छोट ना जाई एह रीत भली भगवंत नानक जरा मरण पै नरक निवार पुनीत करै तिस जंत सुन सखिए एह पली बिनंती एहो मतांत पकाई है सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाइए कल कलेस मिटै भ्रमनासै मन चिन्हया फल पाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आई है सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रम मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख में लाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड पागी माए सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे मेरा मंतन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया प्रम खोयो सांत सहे स्वामी प्रगास भया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सोहाग ना टलिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बाम नखरी महला पंजवा सलोक गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंदप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरदेव मंत निरोदरा गुरदेव सांत सतबुद गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जुग जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कार।

नानक एको रव रया, दूसर होवा ना होग पौड़ी। ओवं साध सतगुर नमस्कारं, आदमद अंत निरंकारं। आपै सोनो आपै सुख आसनो, आपै सुनतो आप ही जासनो। आपने आप आपै उपायो, आपै बाप आप ही मायो। आपै सूखमो आपै अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला।

ओवं गुरमुखियो अकारा एक सुत परो बनहारा भिन्न भिन्न त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं सगल पांत कर करै उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू पांते आप निरारा नानक अंत ना पारा वारा सलोक सेई साह भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सतपुरख ते पिन ना को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसै परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहूं को जापत सो सा

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तंते ऊजह रुच या मनुआ तन नहीं बांछै सुरग ना आछै अत प्रे प्रीत साध रज राचै तंदे कहां ब्यापै ताहूं जो एक छाड़ियन कतै न जाहूं जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भक्त ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुन तो कह जोग ना हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट मैं बिन बूजे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या युग मैं एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत उत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जेह मन सोए पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताके निकट नाम आए सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ आप पासे अपन हा हा करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो पायो जो आप देवायो ओवा का अंतना जाने को जो जो करै सूफन हो एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिख सोर नानक तेह सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सकते उकमाहे हाँ हाँ करते कर्म रत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तौ एउ कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे न बुझे सो प्रभ सधु संग लेखे गणत

तैत तैत लगना, नानक ठाकर सदा अलिपना श्लोक। लाल गोपाल गोबिंद प्रभ गहर गंभीर अथाह,

होवनहार हो सदयाया, अकंत न काहू पाया, कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने, जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना, श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान, नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान, पौड़ी आया सफल ताहू को गनिय, जास रसनो हर हर जस भनिय, आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे, आवत सोजन ना मैं राता, जा को दया मैं बेदाता, एक आवन फिर जो ना आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ, दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो, यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना, यैया जन्मना आवै सो, एक नाम ले मने प्रो, यैया जन्म नहारी है, गुरपुरे की टेक, नानक ते सुख पाया, जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत, गुर पूरे उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए, एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए, का को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया, ऐसी संच जो बिनसत नाही, पसेती अपने कर जाही, साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता, ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी, राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता, उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख, सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी

गण काले सब दिवस सास नह बढ़न घटन तिलसार जीवन लोरे पर मोह नानक तेउ गवार पौड़ी गंगा ग्रास काल तेह जो सागत प्रभ कीन अनक जोन जन्मै मरै आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पै नानक ने छपया सलोक चित चित वो चरण अरबिंद ऊंद कवल बिग सांत प्रगट पै आपै गोबिंद नानक संत मतात पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दै दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिनसो सब दुआ सा संगमन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टेता नानक ज्ञान अंजन जेने तरा सलोक छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी छछा शोहरे दास तुम्हारे दास दासन के पानी हारे छछा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शार स्यान बौचितराई संतन की मन टेक टिकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई सलोक जोर जुलम फूले कनो काची दे बेकार अह बुद्ध बंधन परे नानक नाम छुटार पौड़ी जज्जा जाने हो कश हुआ बांध्यो जो नलनी परमसुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकर तिल नहीं मानी जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसदा ज्यों फिरता साह संग जे हो मैं मारी नानकता को मिले मुरारी सलोक चालांगे उठ नाम जप निस्बा सिरिया राद कारा तुझे न व्यापई नानक मिटै उपाद पौड़ी चज्जा चूर्ण मिटै तुम्हारो राम नाम से कर व्यवहारो चूरत चूरत साक्त मुआ जा कर दे होत पाओ बिया चरक संभल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ चरै काम क्रोध दृष्टाई नानक जाको कृपा गुसाई सलोक यत्न करो तुम अनक बिद रह ना पावो मीत जीवत रहो हर हर भजो नानक नाम प्रीत पवड़ी नया ज्ञानो दृढ़ सही बिनस जाय ए हेत गणती गणो ना गण सको उड़सदारे केत न्यो पेखो सो बिनसतो कास्यो करिय संग ज्ञानो या बिद सही चित झूठो माया रंग ज्ञानत सोई संत सोए भ्रमते की चित भिन्न अंध कूबते देख डो जे होवो सो प्रसन्न न्या कह सम्राते कारण करण योग नानक ते उसत करो न्याहू कियो संजोग सलोक टूटे बंधन जन्म मरण साध सेव सुख पाए नानक मनो न बिसरै गुणित गोविंद राय पौड़ी टहल

जा कौ साध कृपाल साधु संग तौ बसै जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवनो बिन्ना मैं सुख नाहे टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे। बार बार जाऊं संत सदके नानक पाप बिना से कदके सलोक ठाक न होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते धन धन पौड़ी। ठठा मनुआ ठाहै नाही जो सगल त्यागे कै लपटाही ठहक ठहक माया संग मुवे वहां कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संतै संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकर अपने जो जन पाया नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी। डड्डा डेरायो नहीं जय डेरा तै जान ओवा डेरा का संजम गुर कै सबद पछान। ओवा डेरा या डेरा कौ श्रम कर कालै जाका तसु नहीं संचालै। ओवा डेरा की सोमत जान है जाको दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचर सच साध संग पाया नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राए कने न काल्यो बंद नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध पौड़ी। टड्डा टूंडत कै फिराओ टूंडन या मन माहे संग तुहारे प्रभ बसै बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग अहंग बुद्ध बिकराल सुख पावो सजे बसो दर्शन देखने हाल। तेरी जाम है जा मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहे हाहो आवे जाए। टहत टहत अब टह परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना होना तूने छुटै निकट न जाइयो दूत पौड़ी। अनाना रण तेसी जिया आत्म जीतै कोय होमे अनस्यो लर मरै सो सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरै गुरपुरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिलै तेसु रतन वेस। अना को जानै अपनो एकै टेक आधार रहण दिन सो सिमरत रहै सो प्रभुरख अपार। रेण सगल या मन करै एउ कर्म कमाए हुक्मै बुझै सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे नानक परम पौ काटियै चुकै जमकी जो हो पौड़ी। तत्ता तास्यो प्रीत कर गुणित गोविंद राय फल पावै मन बांझते तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ गत पावै मत होए प्रगास मैली पावै ठाओ। ताहू संग न तह चलै ग्रेजो बनै राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज। ताता कछु न होइऐ जो ताप निवारै आप प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबिद कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच सागत मुवे नानक माया ना साथ पौड़ी। थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन कै कामना आवई अंते ओ सरवार। थित पावो गोबिंद भजो संतै की सिखले हो प्रीत करो सद एक स्यो ऐसा चा स्नेहो। कारण करन करावनो सबदे कै हाथ जे जित लावो तित लगै नानक जंथ्या नाथ। श्लोक दस एक निहारिया सबके देवन हार सा सा सिमरत रहै।

देंदे तोट न आवई अगणत परे पंडार। दैन हार सद जीवन हारा मन मूर क्यों ताहे बिसारा। दोष नहीं काहू कौ मीता माया मोह बंद प्रभ कीता। दर्द निवारे जाके आपे नानक ते दे गुरमुख त्रापे। सलोक धर जिया रे इक टेक तू लाहे बिडानी आस। नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी। तद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास। तुरते कृपा करो आप तौ होए मन प्रगास। तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बिसाहा। तीरज जस सोभा तेह बनया हर हर नाम श्रवण जे सुनया। गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक ते जन मिली वडाई। सलोक नानक नाम नाम जप जपया अंतर बाहर रंग। गुरपुरै उपदेसिया नरक नाहे साध संग पौड़ी। नन्ना नरक भरै ते नाही जाकै मंतन नाम बसाही। नाम निदान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना होए खपते। नन्ना कारना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निद निदान हर अमृत पूरे तैं बाजे नानक अनहद तूरे। सलोक पत राखी गुर पार ब्रह्म तज परपंच मोह बेकार। नानक सो आराधी है अंत ना पारा वार पौड़ी। पप्पा परमित पार ना पाया पतत पावन अगम हर राया। होत पुनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपै मिल साधु। पर पज त्रोह मोह मिट नाई जा कौ राखो आप गुसाई। पात साहो छत्र सिर सो नानक दूसरे अवर ना को। सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतेह पई मन जीत। नानक गुरते थित पाई फिरन मिटे नित नीत पौड़ी। फफा फिरत फिर तू आया दुर्लभ देहे कल युग मैं पाया। फिरया ओसर चरै न हाथा नाम जपो तो कटिया फासा। फिर फिर आमन जान ना होई एक एक जपो जप सोई। करो किरपा प्रभ करने हारे मिल लहो नानक बेचारे। सलोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल। सुख संपै बहु भोग रस ना।

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं त्र भवन प्रभ धारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पा ब्रह्म निरलेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना।

नानक पाईऐ साध कै संग, जेहे मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा, जेहे पैंडै मह अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा को ना सिंहानू,

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन कै

हर का नाम जनकार उपरंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वड़ियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मद्दे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास्त पीसर थीवै। अगन माहे होमत प्राण, कनक अश्व है वर भूम दान। न्यौली कर्म करै बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ पी हो मैं मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहू ना बिखिया टरै। जल धोवै बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै।

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए मैं शोरे, जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जाका मिटे अभमान, आपस कहो जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरतन

है। जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो पूल नहार नानक राखन हारिया पार, रतन त्याग कौडी संग्रचै साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्तर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै। चंदन ले प्यो तारै धोए, गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कु मैं पतत बिकराल, नानक काढ लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, शब्द नाहे कश कर।

बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकर कौ रख मन माहे जेह प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस कौ सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लोबावै जेह प्रसाद सुख से सुई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जेह प्रसाद तुझ सब को मानै मुखता को जस रसन बखानै जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगै मान पावै नानक पासे ती कर जावै जेह प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जेह प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जेह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताकै जेह प्रसाद तुझको ना पहुचै मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ता की भगत करे हे जेह प्रसाद या पूखन पहरी जै मन ते सिमरत क्यों वाल सकी जै जेह प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी जेह प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी

रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभ को साह साह चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर उसदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जसक है। जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेखे बिस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मनसदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जे प्रसाद सब की गत होए नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु ना किन्हू लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनके कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उजल होत साध संग मर सगली खोत। साध कै संग मिटे अवमान साध कै संग प्रगटे सुगयान। साध कै संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ महे सुमानी। साध कै संग गोचर मिले साध कै संग सदा प्रफुल। साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहू तावै साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पहन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर साध कै संग ना बींगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हवताप साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बसता गोचर लह साधु कै संग अजर सह। साध कै संग बसै थान उचै साधु कै संग मैल पहुचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है। साधु कै संग सो तन पावे जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कशकाल दर्शन भेट होत निहाल। साध कै संग कलुख तहर है साध कै संग नरक पर हर है।
साध कै संग इहां उहां सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्र मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुर सर्ब को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे महल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे।

राखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सज जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक हो अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पारत्रे रूप ना पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर हरै, मन की बासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। कर्म करत हो

बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहवरना में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सासंग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतारे, पस प्रेत मुग्ध पाथर को उतारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। काहू जूत कते ना पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निगट निगट हर जान, सो दास दर गए परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी पर है, सगल संग आत्मयो दास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सोउ कहावे, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रख है तैसा तिन नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभ पावे सोई फन होग, पसरियो आप होए अंत तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल, सलोक उस्तत करे।

अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते का अंत ना पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेद आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ कहो है।

कबहू ऊंच नीच में बसे, कबहू सोग हर खरखा, कबहू सोग हर खरंग हसे, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक्या मिलावन हार, कबहू नृत्य करे बहुपात, कबहू सोए रहे दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की होतरवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू पिखारी नीच का साजा, कबहू अपकीर्त मह आवे, कबहू पला पला कहावे। ज्यो प्रभु राखे तिवि रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मौन तारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू से साधु मो ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे, ज्यो प्रभु पावे तिवै नचावे, ज्योत पावे सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू साध संग ते हो पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मानता नाम रते करंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राजा मान, सो नरक पाती होवत सुवान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत, आप स्कौ कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बह जोन परमावे, तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहां मुक्त आगे सुख पावे, धनवंता होए कर गर्भावे, तृण समान का संग न जावे, बहु लश्कर मानखी ऊपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत, किसे ना बदाय आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान, सो जन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवे, हर दरगह कहो कैसे गवे, आपस कहो जो पला कहावे, तसे पलाई निकट न आवे, सर्व की रेण जाका मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कश होए, तब इसको सुख नाही कोए, जब है जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लख को उठतावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिखिया के करे, नह तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए, वडभागी किसे प्राप्त होए, करण करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ कहां विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए,
ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ। ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਵੇਕ, ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ। ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦੀ ਰਿਆ ਸਮਾਏ। ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ। ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਭ ਕਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਣੈ ਹਾਰ। ਉਸਤੇ ਪਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਥਾਂ ਥਨੰਤਰੇ ਕੈ ਸੋਏ। ਆਪਣੇ ਚਲ ਤੋ

संत के दोखी का उद्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है, संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा। संत के दोखी की जड़ किशना है, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दोखी को अवरना राखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दोखी ओ बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजे, जो पाप की इंधन नहीं त्रापे, संत का दोखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खे

ठाकुर कौ सेवक जान है संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग। सेवक कौ प्रभु पालनहारा, सेवक की राखै निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभु धारै, नानक सो सेवक सास सास सुमारै। अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर रखै। अपने दास कौ दे वडाई, अपने सेवक कौ नाम जपाई। अपने सेवक की आप्रतपा, अपने सेवक की आपत रखै, ताकि गतमित कोई न लखै। प्रभु के सेवक को न पहुँचै, प्रभु के सेवक ऊँचे ऊँचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया। नीकी कीरी मैं कल रखै, भस्म करै लश्कर कोट लखै। जिसका सासना काटते आप, ताको राख्त देकर हाथ। मानस जतन करत बहु पात, तिसके करतब बिरथे जात। मारे ना राखै अवरना कोए, सर्ब जिया का राखा सोए। काहे सोच करै रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपिया, पी अमृत मंत्र त्रपिया। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शवर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग। नाम रस जो जंत्र बताने, मंत्र नाम है नाम समाने। उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सद काम। बोलो जस जिह बादन रात, प्रभ अपने जन की नींदात। करै भगत आत्म कै चाहे, प्रभ अपने स्यो रह सो आए। जो होवा होवत सो जानै, प्रभ अपने का हुक्म पछानै। तिसकी महिमा कौन बखानौ, तिसका गुण कै एक न जानौ। आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे। मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर्स सब पाप मिटावै। अवर से आणप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। सलोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका ना। तिसकै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर से की करै प्रतपाल, सेव कौ गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर से के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिखो नाम धन दे, गुर का सिख वट पागी है। सतगुर सिखा हलत पलत सवार है, नानक सतगुर सिखो जी नाल सुमार है। गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह। आप सिखाओ कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै। मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास। सेवा करत हुए नेकामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेव गुर की मत ले। बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ। सर्ब निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जानो जन मैं पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम। सहस सियाण पो लया ना जाई है, नानक ऐसा गुर वडभागी पाई है। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसव चरण गत निर्मल रीत। भेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन करने गाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेख हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए। जेबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण बबेक। काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत कने ना पाई।
अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सदबरिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोई, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया कै संग ना लेप, मन में राखै हर हरेक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परमो दुख तै ते नासे, तपत माए ठंड वरताई, अंध भया दुख नाटे भाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पाव चूका निरपा होए बसे, सगल ब्याद मन देखै नसे, जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चूके भ्रम गमन, सुन नानक हर हर जस रवन, निर्गुण आप सरगुण पीओ ही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चरत प्रव्या बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना, नानक हो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर्यो पाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रिद मैं उर तारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वथ, एहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाए, जिस तन को चार कुंट उठता वै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख को नित बाछ मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस सोभा को करह पली करनी, सा सोभा पज हर की सरनी, अन क्यो पावी रोग ना जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन पर बोधो हर कह नाए, दै दिस्तावत आवै ठाए, ता कौ बिघन ना लागे कोए, जा कर दै बसे हर सोए, कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन से पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म परगास, तित कर जाए बसे अबनासी, कहो नानक काटी जम फांसी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवा गमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, एव रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अन क्यों पाप ना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावै मूर्ख मना, सुत मीत कुटंब अर बंता, इनते कहो तुम कमन सनाथा, राज रंग माया विस्थार, इनते कहो कमन छुटकार, अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना, नाम बिसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे, आप जपो अवरा नाम जपावो,
सुनत कहत रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सहे सुबाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल। छाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावे सजतना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दर गै जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जाप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहे प्रव्याप। अनक विस्थार एक ते पै, एक आराध प्राश्त गए। मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जांजा चै प्रभदान, कर कृपा देव हर नाम। साजना की मंग तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम ते आवो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखे आसे जन त्रिपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुब्र परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग। परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग। वड भागी जपया प्रभ सोए, नानक नावरते सुख होए। सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेव की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहया सा संग हजूरी। जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अग्न मै राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै। गुर पूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तरिया संसार, बिन भक्ति तन होसी शार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम।

भक्त जना के मंतन रंग, बिरला को उपावे संग, एक बस दीजे कर मया, गुरप्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभ बख्शन दीन दयाल, भगत वछर सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जप सो है पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनक राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सुकरणी शोभा तनमंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास, सलोक सर गुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप, अष्टपदी जब अकारे हो कश ना दृटेता, पाप उन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संक मात, जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, तब हरक शोक कसै व्यापत, जब अपने आप आपार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम, आपन खेल आप वर्ती जा, नान करने हार ना दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मोत कौ किस कौ गनी, जब एक हर अगम अपार, तब नरक सुर कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए, जब आप है आप अपनी ज्योत तरे, तब कवन निडर कवन कत डरे, आपन चलते आप कर नहार, नानक ठाकर अगम अपार, अविनाशी सुख अपने आसन, तै जन मरण कौ कहां विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत या गोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर या गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, अपने आप ही चर जा, नानक अपन रूप आप ही उपर जा, जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तै शरशिदर लगत कौ कीस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे, तै किसै भूख कवन त्रिपतावै, करण करावन करने हार, नानक करते का नहि सुमार, जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपै परवीन, तै वेद कतेब कहां कूचीन, जब अपने आप उरतार है, तब सगन अब सगन कहां विचार है, जहे अपन ऊच अपने आप नेरा, तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी का जानो आप, जय अशाल अशेदा भेद समाया, ऊहा किसै व्याप्त माया, आपस कौ आपया देश, तेह गुण का नाही प्रवेश, जय कै एक एक भगवंता, तै कौन अचिंत।

जहें आप रचियो पर पंच आकार त्यों गुण मैं कीनो विस्तार पाप उनते पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार दुख सुख माने अपमान अनक प्रकार की बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह अब

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब उपर होवत कृपालो। अपने कर्तव्य जानै आप, अंतर जामी रहो ब्याप। प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करनहार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बनयाई, हुकम बूझ परम पद पाई।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत, राम रतन मन तन बसै तज काम क्रोलो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेस, आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत, राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन ब्यापै जगत कौ तुरिया पावै कोए, नानक संत निर्मल पहे जिनमन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच। नरक सुर्ग ब्रह्म तौ घणौ सदा संगारै मीच। हरख सोग सहसा संसार हाँ हों करत बिहाए, जिन किए तिसे न जाननी चितवै अन क्यों पाए। आद ब्याद उपाद रस कबू न टूटै ताप, पार ब्रह्म पूर्ण धनी न बूझै प्रताप। मोह परम बुढ़त कणो महानरक मैं वास, कर कृपा प्रभ राख लिहो नानक तेरी आस। सलोक चतर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजिया अवमान, चार पदार्थ हिट सिद्ध भज नानक हर नाम। पौड़ी चतुर्थ चारे वेद सुन सो दियो तत विचार, सर्व खेम कल्याण निद राम नाम जप सार। नरक निवारै दुख हरै टूटै अनक कलेस, मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन परवेश। पाओ बिनसै अमृत रसै रंग रते निरंकार, दुख दर्द अपवित्रता नासै नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल, मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवाल। सलोक पंच विकार मन में बसे राचे माया संग, साध संग होए निर्मला नानक प्रभ कै रंग। पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच, कुसम बास बहु रंग कणो सब मिथ्या बलबंच। नह जापै न बूझिए न कछ करत विचार, स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक, रचन हार न सिमरियो माना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त नारंच, नानक बिरले पाई जो ना रचै परपंच। सलोक खट शास्त्र उच्चो कह अंत ना पारा वार, भगत सोहै गुण गावते नानक प्रभ कै द्वार। पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ अनेक, उत्तम उच्च पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख। नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद, रसगी दे हर स्यो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान परम बिनसियो पाई सरन दयाल, चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिलै तोटा हिराए सा संग लिव लाए, खाट खजाना गुण निधारे नानक नाम ते आए। सलोक संत मंडल हर जस कथ बोलै सत सुभाए, नानक मन संतोखी है एक सिसो लिव लाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार, संत संगत मैं पाई है अंत ना पारावार। आप तजो गोबिंद भजो शरण भरो हर राय, दुख हरै पव जल तरै मन चंदया फल पाए। आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान, अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण।
सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तिस बले हारणै हर हर नाम जपे। सलोक आठ पहर गुण गाइयै तजियै अवर जंजाल जम कंकर जोहे न सकई नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रकाश सदा आनंद निर्मल रीत निरुद्र मंत सगल धर्म पवित्र इशनान समय उच बसेह ज्ञान हर हर भजन पूरे गुरसंग जप तरिया नानक नाम हर रंग। सलोक नारायण ने सिमरियो मोहयो स्वाद बिकार नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार। पौड़ी नौमी नवे छदर अपवीत हर नाम न जपै करत विपरीत पारतरे रमै बकै साध निंद करन न सुनही हर जस बिंद हिरै पर दर्ब उदर कै ताई अग्न न निवरै तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे। सलोक दह जस खोजत मैं फिरयो जत देखौं तत सोए मन बस आवै नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। सलोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखै कठाए, मन तन सुध जपत हर नाए, सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम इशनान, हर की भगत करो तजमान, हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र तासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निहचौ पाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। सलोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पत्तो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरके अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर सोका दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आसा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश सब मैं प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तैं बसै दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। सलोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरदेव, मन तन शीतल शांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम, दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवा गवन, आप तरिया कोटा बस्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम, गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। सलोक पूरन कबो न डोलता, पूरा किया प्रव्याप, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। पौड़ी पूर्ण मां पूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ, जी जंत दयाल पुरख, सब ऊपर जा का हथ, गुण निदान गोबिंद गुर, किया जा का होए, अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए, पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब जन नहार, संत सहाई शरण योग, आठ पहर नमस्कार, अकथ कथा न बुझिए, सिमरो हर के चरण, पतो धरण नाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। सलोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राय, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। पौड़ी कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेसै को दृढ़ै, तिसका होए उधार,
किलबे काटै हुए निर्मला, जन्म जन्म मल जाए, हलत पलत मुखी उजला, नैपो है तिसमाए। सो सुरता सो बैसनो, सो ज्ञानी तनवंत, सो सूरा कुलवंत सोए, जिन भजया भगवंत। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उदरै सिमर चंडाल, जिन जान्यो प्रभ अपना, नानक तसैरवाल। गौड़ी की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा, सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा, मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याई है, गुरमुख पावे कोए। महला चौथा, हम है माया सब विख है, नित जग तोटा संसार, लहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हम मैं मैल बिख उतर, हर अमृत हर ओर धार, सब कार तिन के सिद्ध है, जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले से मिल रहे, हर मेले सृजनहार। पौड़ी, तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चा गोसाई, तुदनो सब ते आईंदी, सब लगे तेरी पाई। तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है, जिन कीति तिस पार लंघाई, गुरमुखा नु फल पाईंदा, सच नाम समाई। वड्डे मेरे साहिबा, वड्डी तेरी वड्याई। सलोक महला चौथा, विण नावै होर सलाहना, सब बोलन फिका साध, मनमुख अहंकार सलाह दे, हौं मैं ममतावाद। जिन सलाहन से मरै, खप जावै सब अपवाद, जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। महला चौथा, सतगुर हर प्रभ दस, नाम ते आई मन हरी, नानक नाम पवित, हर मुख बोली सब दुख पर हरी। पौड़ी, तू आपे आप निरंकार है, निरंजन हर राया, जिनी तू एक मन सच ते आया, तिनका सब दुख गवाया। तेरा श्री को नाही, जिसनो लवै लाए सुनाया, तो जेवड़ दाता तू है निरंजना, तू है सच मेरे मन पाया। सच्चे मेरे साहेबा, सच्चे सच नाया। सलोक महला चौथा, मन अंतर हम मैं रोग है, प्रम पूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग गवाए, मेरे सतगुर साधु सजना। महला चौथा, मन तन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुण तास, जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबास। पौड़ी, तू करता पुरख या गम है, किस नाल तू वड़ी है, तुद जेवड़ होए सो आखी है, तो जेहा तू है पड़ी है। तू घट घट एक वर्तदा, गुरमुख पर गड़िया, तू सच्चा सब सदा खसम है, सबदू तू चढ़िया, तू करै सो सच्चे होए सी, तां कायत कड़िया। सलोक महला चौथा, मैं मन तन प्रेम प्रम का, अठे पहर लगान, जन नानक कृपा धार प्रभ, सतगुर सुख वसन। महला चौथा, जिन अंदर प्रीत ब्रह्म की, ज्यो बोलन तवै सोहन, नानक हरे आपे जानदा, जन लाई प्रीत पेरन। पौड़ी, तू करता आपा पुल है, पुलन विच नाही, तू करै सो सच्चे भला है, गुरशब्द बुझाही। तू करण कारण समर्थ है, दूजा को नाही, तू साहिब अगम दयाल है, सब तुद ते आही, सब जी तेरे तू सब सदा, तू सब छडाही। सलोक महला चौथा, सुन साजन प्रेम संदेश रा, अखी तार लगन, गुर तुठै सज्जन मिलिया, जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर

नरक कोर मोह काले खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावे। फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे जा हर हर नाम ते आवे। हर बाता आग सुनाए नानको हर करते ए वै भावे। महला चौथा पूरे गुर का हुक्म न मन्ने ओह मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया। ओस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अणहोंदे झगड़े दईये उस दे गल पाया। ओ गल फरोसी करे बहु तेरी उसदा बोलिया किसै ना पाया। ओह घर घर हंडै जो रन दुहागण उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया। गुरमुख होए सो अलिपतो वरतै उसदा पास छड गुर पास बह जाया। जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया। पहला आगम निगम नानक आग सुनाए पूरे गुर का बचन उपर आया। गुर सिखा वडियाई पावे गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया। पौड़ी सच सच्चा सबदू वड्डा है सो लै जे सतगुर टिके सो सतगुर जे साहित्य आईंदा। सच सच्चा सतगुर एके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके। जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोए फिके। ओए बोले किसै ना भावनी मोह काले सतगुर ते चुके। सलोक महला चौथा हर प्रभ का सब खेत है हर आप किरसाणी लाया। गुरमुख बख्श जमाइयान मन मुखी मूल गवाया। सब को बीजे अपने भले नो हर भावे सो खेत जमाया। गुर सिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फले अमृत पाया। जम चूहा किरस नित कुरकदा हर करतै मार कढ़ाया। किरसाणी जमी भाव कर हर बोहल बख्श जमाया। तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन जिनी सतगुर पुरख ते आया। जन नानक नाम आराध्या आप तरिया सब जग तराया। महला चौथा सारा दिन लालच अटिया मनमुख होरे गल्ला। राती उगै दबिया नवे सोत सब ढिला। मन मुखा दे सिर जोरा अमर है नित देवै भला। जोरा दाख्या पुरख कमाम दे से अपवित अमेद खला। काम व्यापक शुद्ध नर से जोरा पुछ चला। सतगुर कै आखे जो चले सो सतपुरख पल भला। जोरा पुरख सब आप उपायन हर खेल सब खिला। सब तेरी बणत बनावनी नानक पल भला। पौड़ी तू वेहो तू वे प्रवाहो अथाहो है अतुल क्यों तुलिये। सेवड पागी जे तो त्याय दे जन सतगुर मिलिये। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनी है। सतगुर की रिसै होर कच पिच बोल दे से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है। ओना अंदर होर मुख होर है बिखमाया नो चख मर दे कड़ी है। सलोक महला चौथा सतगुर की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले। जिन अंदर कपट विकार झूठ ओए आपे सच्चे वख कड्डे जजमाले। सच्यार सिख बै सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले। जिन्ना सतगुर का आखिया सुखावै नाही तिन्ना मोह भलेरे फिरै दईए गाले। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी से किचर कवे राइयन मन मुख बेताले। सतगुर नो मिले सो अपना मन थाए रखै ओह आप वरतै अपनी वथ नाले। जन नानक एक ना गुर मेल सुख देवै एक आपे वख कड्डै ठगवाले। महला चौथा जिन्ना अंदर नाम निधान हर तिनके काज दईये आंदे रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग।

मंत्र बताय हर सिखाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोज इंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पा

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा लेन तिन्ना दरगह ले छाए। महला तीजा मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुवे मतहारी, कूड़क सत ओह पा।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा।

गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जाने आ, तब लोगे काहे दुख माने आ। हम अपते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई रहाओ। हम मंदे मंदे मन माही, सांझ पात कहू स्यो नाही। पत या पत ताकि नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पत हर परवान, सर्ब त्याग भज केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगर फिरत जाओ पाई है जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीन से आत्म राम रहाओ। मुंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेड़ ना गई आकाई। बिंद राख जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात इशनान कराही, ज्यों पै दादर पानी माही। जाओ पै राम राम रत नाही, ते सब धर्म राय कह जाही रहाओ। काया रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बवागर, साधु सुख पावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महा।

भेखारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभु कृपा की जय हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवां ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरि अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट भई खेड लेले कहो चूंगै नित भेड राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यों जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत भई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गाज शिव।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जाओ बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। प्रीत बिना कैसे बदा स्नेहो, जब लग रस तब लग नहीं नेहो रहाओ। साहन सत करे जी अपने, सोर मैये को मिले ना सुपने। तन मन धन ग्रहो सौंप शरीर, सोई सुहागन कहे कबीर। गौड़ी कबीर जी बिखिया ब्यापिया सगल संसार, बिखिया लै डूबी परिवार। रे नर नाम चौड़ कत बोड़ी, हर स्यो तोड़ बिखिया संग जोड़ी रहाओ। सुर नर दा दे लागी आग, निकट नीर पस पी वसना झाग। चेतत चेतत निकस्यो नीर, सो जल निर्मल कथत कबीर। गौड़ी कबीर जी जेहे कुल पूतना ज्ञान बिचारी, विधवा कसना पई महतारी। जह नर राम भगत ने सादी, जन्मत कसना मोह अपराधी रहाओ। मुच मुच गर्भ गए कीन बचया, बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजया। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना कैसे कुबज करूप। गौड़ी कबीर जी जो जन लेहे खसम का नाओ, तिन कै सद बलिहार जाओ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावै, सो पाई मेरे मन पावै रहाओ। जेह कट राम रया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर। जात जुलाहा मत का तीर, सहज सहज गुण रवै कबीर। गौड़ी कबीर जी गगन रसाल चुवै मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी। ओवा को कहिय सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाओ। सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अंदर जाई। चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनपव पाया। गौड़ी कबीर जी मन का स्वभाव मने व्यापी, मने मार कमन से थापी। कमन सो मोन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना होई। कहो कबीर जो जाने पे ओ, मन मधुसूदन त्रिपवन दे ओ। गौड़ी कबीर जी ओ।

सूर्य चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकत

हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया, गौड़ी कबीर जी दे मुहा।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कै चाबक माराओं। कहत कबीर भले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया समाए रहाओ। काको जरे कहे हुए हान, नटवट खेले सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे ना मैं जोगते।

कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुन।

कहे कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवर ना होई। कौन को पूत पिता को का को, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग

कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियोर लाए, पंच दूते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काढ लीन सागर संसार। चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसै नेता नित चीत। माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पे खो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई। जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक योपत होई। जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बेगोई। कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रहाओ। नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवनी होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई। फासन की बिद सब को जानै, शूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय विचार है, सूतक तनै ना होई। गौड़ी झगरा एक न बेरो राम, जाओ तुम अपने जन सौ काम रहाओ। एहो मन बड़ा के जा सौ मन मानिया, राम बड़ा कह राम मैं जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जा सो पाया, वेद बड़ा के जहां ते आया। कह कबीर हो पाया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। राग गौड़ी चेती

दुचिते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना शान परी तारी उपर, दुरमत पांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरखे, तह तेरा जन पीना। कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर जा सुने ना हर गुण गावे, बात नहीं असमान गिरावे। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगते बाहजो। तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चाल, आप गए और नहू कहल। छाड़ को चर्चा यान न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहू खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर नाम।

एक है शब्दी, एक है सिद्धपाई, हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो, ते बांधे बो फंदा रहाओ। जह ते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बढ़म ही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै, इन बिद माणक लही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही है। हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एको अंकार, सतगुर प्रसाद, जह कछ आहा तहां किछ नाही, पाई तत्त नाही, इड़ा पिंगला सुख मन।

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़नहारो सदा अतीता एक ही है किस्माही। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टूटे जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही पर जाने ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प बिबरजित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बेयोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगन पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर तां को पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये पाचन से अडाई। जौ कर पाचन बेग ना पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतन निकस नतर रही उरजाई। छोड़ पसार इहार बपरी कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित कट नाम नाई उपजे फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रा मैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ। साध मिलै सिद्ध पाई है के ओहो जोग के भोग। दुह मिल कारज उपजै राम नाम संजोग। लोग जाने एहो गीत है एहो तो ब्रह्म विचार। ज्यों का सी उपदेश होए मान समर्ति बार।

जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म धर्म करते बहु संजमो अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहीं बिचारे ओरे उन्मत मान हिरेओ मन माही गुर का शब्द ना तारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगा ने कष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बवा रे अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गयो मन बौरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरा रे त्यों पसरियो उपासार नामन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर।

तस कर निर्णय आवे। राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कत ही ना जावे। हमरा तन माधव गोबिंद तरणी धर, एह सार तन कही है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लही है रहाओ। इस तन कारण शिव सनकादक, खोजत पए उदासी। मन मकांजे बा नारायण, परै न जमकी फासी। निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी, तास सुमत मन लागा। जलत अंब थंब मन धावत, परम बंधन पौ भागा। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी। तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती, हम कर एक मुरारी। गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुप्त ना त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर ग्रह परयो। भगत बिन बिरथे जन्म गयो। साध संगत भगवान भजन बिनु, कही ना सच रहयो रहाओ। ज्यों उद्यान कुसुम पर फुलत, कने ना कराओ लयो। तैसे प्रमता नेक जोन में, फिर काल हयो। या तन जोबन अरसुत दारा, पेखन कहो जो दयो। तिन्ही माहे अटक जो उर्जे, इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिनको मंदर, चौदे ठाठ ठयो। कह कबीर पै सागर तरन कहो, मैं सदगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। मैं नाही कश आहे ना मोरा, तन तन सब रस गोबिंद तोरा रहाओ। इस माटी मैं पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, खिर मैं बिन सजाए हंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ। जात पावे ता हुक्म नावे, इस बेड़े को पार लंगावे। गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर पज सारिंग पानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नामी जोन छाड़, जो जग में आयो। लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रहाओ। गर्भ जोन में उर्द तप करता, तव जठर अग्न में रहता। लख चौ राशि जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो। कहो कबीर पज सारिंग पानी, आपत दिसै जात ना जानी। गौड़ी पूर्वी सुर्ग बासना बांछिया, डरिए ना नरक निवास। होना है सो होई है, मने न की जय आस। रमैया गुण गाई है, जाते पाइये परम निधान रहाओ। क्या जाप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या इशनान। जब लग जुगत ना जानिए, पाओ भगत भगवान। संपै देखना हरखिए, बिपत देखना रोए। जो संपै त्यों बिपत है, बिद ने रचिया सो होए। कह कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा भले, जेह कट बसै मुरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार। बिरख बसेरो पंख को, तै सोयो संसार। राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए, रस और रहाओ। और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रहाए। जो उपजै सो बिनस है, दुख कर रोवै बलाए। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। कह कबीर चित चेतिया, राम सिमर बैराग।
ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕੰਮ ਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲਿਓ ਸਾਸਾ ਉਰਨਾ ਪੀਜੈ ਭਗਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਬੇਗ ਮਿਲੀ ਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਓ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨੋ ਹਰ ਕੀ ਪਤ ਕਰੀ ਜੈ ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣੋ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਮਾਝ ਬਨਾਰਸ ਗਾਉਂ ਰੇ ਉਵਾ ਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨੋ ਮੋਕੋ ਛੋਟ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਊ ਰੇ ਤੋਹੇ ਚਰਨ ਮਨ ਲਾਗੋ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ ਬਟ ਭਾਗੋ ਰਹਾਓ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਰੇ ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕਰ ਤੁਹੀ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ ਮੋਹੇ ਕਬੀਰਾ ਨਾਊ ਰੇ ਗੌੜੀ ਬਾਰਵੀਂ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਰਵੀਂ ਬਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ ਕਿਆ ਬਨ ਮੱਦੇ ਬਾਸਾ ਕਹਾਂ ਭਇਆ ਨਰ ਦੇਵਾ।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एहो जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा गौड़ी बारवी मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सनमुख रंते डरप सती के साचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ो सगल ऊते ऊंचा गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई ऊपर।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार, कहे कबीर गुलाम कर का, जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन में परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ, संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भय है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले प्रगास हो जारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्ता नूप ना पाई। कहत कबीर नवे कर मूसे, दसवें तत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुन गावे, तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल में ध्याना ना। बिखे रोग पै बंधन भागे, मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना आना ना। चंदन बास भय मन बासन, त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्या जस ठाकर, तास प्रभु है थाना ना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो, एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहे बोल तै मन न रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तसलख है न कोई। अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहो, जा को तीन लोक विस्तार। अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग अशेद। तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान। ओवंकार आद मैं जाना, लेखियार मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल मैं पावा, सस विघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहा कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा। खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रह, ता होए निखियाओ अखै पदल है। गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न धरी काना, रह बिहंगम कत ना जाई, अगै गह गै गगन रहाई। कग्गा घट घट निवसै सोई, घट फूटे घट कवै ना होई। ता कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अव कट कत्तावा। नंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह। चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र है चेतो चितकारी। चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छच्छा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा। रे मानव मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा। जज्जा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, अस जर पर जर जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लहै। चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, चगर किए चगरो ही पावा। नन्या निकट जो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढे आओ, नेराओ पायो ताहे। टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देखया टल टल कत ना जावा। रह लपट कट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा। जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर रहा समाई। जाओ डर डर ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे। टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंडत ही टह गए पराना। चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

होई खोज बूझ जो करै बिचारा तो भव जल तरत न लावे बारा ससा सो सहसे सवारै सोई सही संदेह निवारै अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एह त्रियो कंत कहावा हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना है तो सही लखे जो कोई तब ओही ओहो एहो ना होई ल्यो ल्यो करत फिरै सब लोग ता कारण व्यापै बो सोग लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावै सोग मिटै सब ही सुख पावै खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजू न चेते अब जग जान जो मना रह जह का बिचरा तह थिर लह बावन अखर जोरे आन सकिया ना अखर एक पछान सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अन पैर है पंडित लोग कौ व्यवहार ज्ञानवंत कौ तत् विचार जा कह जी जैसी बुद होई कह कबीर जाने गा सोई एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थिति कबीर जी की श्लोक पंद्रह थिति सात वार कह कबीर उर्वार ना पार साधक सिद्ध लख जो पे ओ आपे करता आपे दे थिति अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो जीवत पावो मोख द्वार अनपौ शब्द तत् निजसार चरण कमल गोबिंद रंग लागा संत प्रसाद भय मन निर्मलो हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ परवा प्रीतम करो विचार घट में खेले अकट अपार काल कल्पना कदे ना खाए आद पुरख में रह समाए द्वितीया दोहकर जाने अंग माया ब्रह्म रमै सब संग ना उबड़ै न करता जाए अकुल निरंजन एक कै पाए तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावै साध संगत उपजै विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास

ना पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरै कला सहज प्रगास आदि अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में रमै कबीर। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ। आदित करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनस अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज मह वाए। सोमवार सस्य अमृत चरै चाखत बेख सगल बिखहरै बाणी रोकिया रह द्वार तो मन मत वारो पीवनहार। मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत घर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिसै है राए। बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का बास गुरमिल दो एक समतरै उर्द पंक लै सुदा करै बृहस्पति बिखिया दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वै नाहे। सुकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै अनदिन आप आप स्यों लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै। थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वट्टी कट मैं जोए बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास। जब लग कट मैं दूजी आन तौ तो लो महल न लाभ जान रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग।

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन ते ऊ मुक्त भये, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

हरा गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुआरेरी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोए खूब

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पुखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, प्रबंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, टारी ना टरै प्रम फास, प्रेम

काल मुहूर्त अजूनी से पंगुर प्रसाद राग आसा महला पहला कर पहला सोदर सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित मैं सर्व समाले वाजे तेरे नादा ने का संखा केते तेरे वावण हारे केते तेरे राग परिशो कही है केते तेरे गावण हारे गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दर नाले गावन तुदनो से समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़े रखी सर जो जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाए तेरे जेते अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सा साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष पावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला चौथा सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमया पारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कड़कड़ अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख सुवाना एक दात एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिने अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवै जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त पै जन हर त्याया जियो तिन टूटी जमकी फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जियो तिन का पौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तानो जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी।

सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहब साचा नाय रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जैसा मिलके आखण पाहे, वड्डा ना होवे काट ना जाए।

आए, तू सर्वे पूर रहया लिव लाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी, काली नथ क्या वड़ा भया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंतरा पायो ताका, कंस छेद क्या वड़ा भया। रत्नो पाए तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला, कर्म कर तूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप ना रेखा नाह दवाजै, शब्द निरंजन किया। करे वख्याण जाने जे कोई, अमृत पीवै सोई रहाओ, जिन पिया से मस्त पहे है, टूटे बंधन फाहे। ज्योति ज्योत समाणी पीतर, ता छोड़े माया के लाहे, सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया, सगल पवन तेरी माया, रारै रूप निरालम बैठा, नजर करे विच छाया। बीना शब्द वजावै जोगी, दर्शन रूप अपारा, शब्दा नहद सो सौराता, नानक कह विचारा। आसा महला पहला, मैं गुण गल्ला के सिर पार, गली गल्ला सिरजनहार, खाना पीना हसना बाद, जब लग हृदय न आवै याद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किस ली जी ली जय रहाओ। मन की मत मता गल मता, जो किश बोली है सब खतो खता, क्या मोहल कीच अरदास, पाप पुंद साखी पास, जैसा तू करै तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जेही तू मत देहे ते ही को पावै, तुझे आपे पावै तवै चलावै। राग रतन परिया परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते कहो धन माल, जे को आखे हो बिचार। आसा महला पहला, कर कृपा अपने घर आया, तामिल सखिया काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, शह भी आहने आया। गावो गावो कामणी बबेक विचार, हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ। गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होवा, जा सह मिलिया ता जानिया, तेहो लोका मैं शब्द रव्या है, आप गया मन मानिया। अपना कार्ज आप सवारे, होरन कार्ज ना होई, जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई। पणत नानक सबना का परे को सोए, जिसनो नजर करे सासो हागण होए। आसा महला पहला, गृह बन समसर सह सुभाए, दुर्मत गत पै कीर्त ठाए, सच पौड़ी सच मुख नाओ। सतगुर सेव पाए रही थाओ, मन चूरे खड़ दर्शन जान, सर्ब ज्योत पूर्ण भगवान रहाओ। अधिक त्यास पेख बहु करै, दुख बिख्या सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुबदा छोड़ नाम निस्तरै। सिवत सलाहण सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोबिंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पै आगै जिंद। झूठ विकार महा दुख देहे, पेख वर्ण दिसै सब खेहे, जो पजै सो आवै जाए, नानक असर नाम रजाए। आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप, उजल मोती चुगै हंस, सर्व कला जग दिसै अंस, जो दिसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल ना दिसै रहाओ। बिरला बूझै पावै भेद, साखा तीन कह नित बेद, नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए।
ਮੁਕਤੋ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਰਵਾਤੋ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਦਾ ਬਿਕਸੰਤੋ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੂੜਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰੈ ਤਾਰ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਉਲਟ ਭਈ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਆਣਿਆ ਅਹਿਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र पित न आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हम मैं माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राख है अमृत चाख है, सतगुर सेव अमृत शब्द भाख है, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए। आसा महला पहला, जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हिरदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

हर वारो जिन पाया धन नारी हर सिउं राती शब्द विचारी आप तरै संगत कुल तारै सतगुर सेव तत् विचारै हमरी जात पत सजनाओ कर्म धर्म संजम सत पाओ नानक बख्शे पूछना होए दूजा मेटै एको सोए आसा महला पहला एक आवै एक जावै आई एक हर राते रहै समाई एक धरन गगन में ठावर ना पावै से कर्महीन हर नाम ना त्यावै गुर पूरे ते गत मित पाई एहो संसार बिखवत अत भौजल गुर शब्दी हर पार लंघाई रहाओ जिन कौ आप लय प्रमेल तिन कौ काल न साकै पेल गुरमुख निर्मल रहै प्यारे ज्यो जल अंब उपर कमल निरारे बुरा भला कहो किसनो कहिए दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लहिए अकथ कथो गुरमत विचार मिल गुर संगत पावो पार शास्त वेद सिमरत बहु भेद अठ सठ मजन हर रस रेद गुरमुख निर्मल मैल ना लागे नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे आसा महला पहला निम्न उपाय लग

प्रभ दूर नाहीं प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई पीख को पीखिया खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टाहे सारे तरे त्यान। तुते

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंध, खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पाओ जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हम बलिहार ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा।

नदर करे तां सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै। आसा महला पहला पंचपदे। दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही। की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही। रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विनसे वा फल लागै। अखर बिरख बाग पोए चोखी, सिंचित पाओ करेही। सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही। जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसै नाही। दुख सुख पाना तेरा होवै, विण नावै जियो रह नाही। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जुगत नाही। कह नानक जीवा ले जिया, जय पावै तै राख तुही। आसा महला पहला। काया ब्रह्मा मन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुसपाती। हर नामा जा जाचो नाओ, गुरप्रसादी ब्रह्म समाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चजाचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम संभाल। एथे उथे निभी नाल, विणना वै होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल। चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै। तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक। आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्ट दसी चहो भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया। आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई। जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचे दरबार रहाओ। सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खसम सुने सावास। सच्चे तख्त

मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक ना पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने भेद। गुरबिन सोजी बूझ न होए, साचा रव रह या प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिन सह दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर से मिलना ना दे बुरी, सखी साजनी के हो चरण सरेवा। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना यवर कोई, जो तू राखै तिवि रहना। दुख सुख दे वै करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त। त्रिगुण आस निरास भई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है। संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता।

मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कल्पै माई, एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जंपर जाहे, गुर दीख्या ले जब तब कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए, आसा महला पहला। आप करे सच अलाख्या।

साहुरड़ तन सच पछाणिया सहज सुभाए अपना पिर जाणिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवै ता कामण कंतै मन भावै कहत नानक पै भाव का करे सिंगार सभी से जरवै पतार आसा महला पहला ना किसका पूत ना किसकी माई झूठे मोहे भरम भुलाई मेरे साहेब हाँ कीता तेरा

कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरण पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबियाले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा घर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवै ता सब निरा फल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजै लख आवै लख जाहे जा पत लेखै ना पवै ता जी किथै फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़ै पुराण जा पत लेखै ना पवै ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजै कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जा एनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतिया दर्शन कहताई दुख पुख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए दुखिए दर्द बंद दर तेरा नाम रते दरवेश पे

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे नायवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तेरे मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंदावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे

अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस भोगं रहाओ शिव नगरी में आसन बैसाओ कल्पते आगी बादं सिंगी शब्द सदा तुन सोहै एनिस पूरे नादं पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान बेपूतं हर कीर्त रह रास हमारी गुरमुख पंथ अतीतं सगली ज्योत हमारी समया नाना वर्णा नेकं कहो नानक सुन पार्थर योगी पार ब्रह्म लिवेकं आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै कर करनी कस पाई है पाठी पवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआई है बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया अहनस बनी प्रेम लिवलागी शब्दा नाहद गहया रहाओ पूरा सच प्याला सहजे तिसे पियाए जा को नदर करे अमृत कावा पारी होवे कैमद शूछै पाओ तरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करै किया सिफती रता सद बैरागी जुवे जन्म ना हारै कहो नानक सुन पार्थर योगी खीवा अमृत धारै आसा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोसना देई करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैकी दर्द ना आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारे ता मन रोसना होई रहा हो सकता सीहो मारे पै वगै खसमै सा पुरसाई रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती मुया सार ना काई आपे जोड़ वे छोड़े आपे वेख तेरी वड़ियाई जे को ना उतराए वड्डा साध करे मन पाने खसमै नदरी कीड़ा आवै जेते चुगै दाने मर मर जीवै तक्ष पाए नानक नाम वखाने राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावै वडभाग गुर कै सब सचै बैराग खर दर्शन वरतै वरतारा गुर का दर्शन अगम अपारा गुर कै दर्शन मुक्त गत होए साचा आवसै मन सोए रहाओ गुर दर्शन उदरै संसारा जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर कै दर्शन सदा सुख होए गुर कै दर्शन मोख द्वार सतगुर सेवै परवार सधार निगुरे कहो गतकाई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही गुर कै शब्द सुख सांस शरीर गुरमुख ता कहो लगे ना पीर जम काल तिस नेड़ ना आवै नान गुरमुख साज समावै आसा महला तीजा शब्द मुवा

राए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर ते सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाणै आवन जान रहै थिर नाम समाणै जम्मण मरना है संसार मन मुखा चेत।

तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। हमारा तड़ा हर रया समाई, हम हर सो तड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक। रहाओ जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे। थिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है। एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी। जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कलयुग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सतसंग मिलाए, हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा भाव तड़े बह पावै, प्राया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै। जैसा बीजै तैसा खावै, जन नानका हर तड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवै। आसा महला चौथा, हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया। गुरबाणी हर लख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना। एको रव रहया कट अंतर, मुख बोलो गुरे अमृत बैना। रहाओ मैं मंतन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड भाग। दूजे पाए पवै बिख माया, भाग ही नहीं सतगुर पाया। अमृत हर रस हर आप पियाया, गुरपुरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार। नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सहना।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा में

दुख रोग भय गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाए भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुरसब दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब नहीं चल थाए जगतो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दोख परे मेरे पछ है अब पकड़े नहीं।

तेरे हर हर राय, नाम तेरा जब जीवै नानक, ओत पोत मेरा संग सहाय। आसा महला पंजवा, अरड़ावै बिललावै निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावै निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवै, नाले लय सदावै, अनहोंदा अजगर भार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावै। परमेश्वर कै द्वारे जे होए बतीतै, सो नानक आख सुनावै, भगत जना कौ उसदा आनंद है।

बिगड़ रूप मन में अभिमान, सोहनी स्वरूप सुजान विचखन, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाकसाल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरै पुगै भोग, आचार करै शोभा मै लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

जो तू करै सोई प्रवाण, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरा कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवां, निकट जी कै सदही संगा, कुदरत वरतै रूप रंगा। करै ना चुरै ना मन रोमन हारा, अवनासी अवगात्या गोचर। सदा सलामत खसम हमारा रहाओ, तेरे

वेमो ताजा वे प्रवाहो नानक दास कहो गुरवाहो आसा महला पंजवा हर छोड़ होश रस माता घर मैं वस्त बाहर उठ जाता सुनी ना जाई सच अमृत काथा रार करत झूठी लग गाथा रहाओ वजो साहेब का से बिरानी ऐसे गुनैशा देव प्राणी तेस्यों लूक जो सद ही संगी कामना आवै सो फिर मंगी कहो नानक प्रभ दीन दयाला ज्यो पावै त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहां उहां उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल चरण कमल स्यों लागो मान सतगुर तूठे कीनो दान नानक कहो गुर दीख्या दीन प्रभ अबनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बिनोद परे पुरतारिया अपना कार्य आप सवारिया पूर समग्री पूरे ठाकर की भरपुर धार रही सोभ जा की रहाओ नाम निदान।

और आज मिलक जोवन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती और घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगे काम न आवे छोड़ चला अभिमानी काहे एक बिना चितलाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याई है रहाओ। महाबचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किशाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मुए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन महामोहनी मगन, प्रे प्रीत प्राण को त्यागे विरला। चरण कमलिया नूप हर संत मंत, को लागे साधु नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग वडभागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवां महला पंजवां, जो तुद भावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई। तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता सियाण पजन की, जो तू करै करावे रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त या गाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया। जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता। परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवै पराई, अपना कीता पावै, इहां सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावै। निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंचना साकै काहू बातै, आगै ठौर ना पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करै बिचारा, तहां बिकूता जै कोई ना राखै, ओ किस पै करे पुकारा। निंदक की गत कत हू नाही, खसमै एवै भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। संतां टेक तुम

बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठावरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साफ न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नजर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचा आप निवारे, पंच जनाले वसगत रखे, मन में एक अंकारे। तेरा जन निरत करे गुण गावे, रबाब पखाव जो ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावे रहाओ। प्रथमे मन प्रबोध अपना, पाछे अवर रिझावे, राम नाम जप हृदय जापै, मुक्ते सगल सुनावे। कर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मंतन अर्प तरे गुरु आगै, सत पदार्थ पावे। जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे। आसा महला पंजवा, आदम चंडाली पई ब्राह्मणी, सूदी ते श्रेष्ठ आई रे, पाता लिया काशी सखनी, लहबर बूजी खाई रे। घर की बिलाई अवर सिखाई, मूसा देख डराई रे, आज कह वस गुर की नोके हर, कुकर तने लगाई रे रहाओ। बाई थूनिया छपरा।

सब जग बौराया ना मिले सुख पाइए। क्या कहिए किस आग सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस। जे देहे वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई, एत्यो तुझे ते आओ, नानके प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवां, अमृत नाम थुमारा ठाकर, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर वचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। तन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, तन सो कलयुग साध संकीर्तन गाई है, नानक नाम आधार ही हो। आसा महला पंजवां, आगे ही ते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना, भूल चूक अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंधकूप।

बुरा भला को, बुरा भला को किसनो कही है, सगले जी तुम्हारे रहाओ, तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रख, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिसको बेपना।

ओरी रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुटे ओरी सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुटे ओरी दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो सम्राथ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बने ओरी महामंत्र गुरु हृदय बसेओ अचरज नाम सुने ओरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा लाल चोलना तैं तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुर ज्ञान प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल सुन री सखी ए हमरी काल प्रभ आप सिंगार सुवारण हार रहाओ दूजा आसा महला पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोय मिली हदूर चुका निहोरा सखी सहेरी भरम गया गुर पिर संग मेरी रहाओ निकट आन प्रे से धरी कान कड़न ते छूट परी मंदिर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं पिर घर आया थिर सुहाग नानक जन पाया आसा महला पंजवा साज नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना धरता दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया आसा महला पंजवा पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगरलिया कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बनाले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया शलिया बिकार बिखर

सोव स्थान बतावो मिता, जाके हर हर कीर्तन निता रहाओ। शास्त्र वेद पापुन विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभु कृपा ते मन वसे आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाइए, एहो अस्थान गुरु ते पाइए। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बाहर फन सुखा, हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै, सो नाम जपै जो जन तुद पावै। रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तह दुख डेरा, हुक्म बूझे सोई परवान, सास सब जा का निशान, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, पणत नानक मेरे मन सुख पाया। आसा महला पंजवा, जहां पठावो तै तै जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई। रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई, मन तन अंतर तुझे ते आई।

पंजवा उठत बैठत सोवत आई है, मार्ग चलत हरे हर गाई है, श्रवण सुनिजय अमृत कथा, जा सुनी मन होए आनंदा, दुख रोग मन सगले लथा रहाओ, कार्य काम बाट घाट जपीजै, गुरप्रसाद हर अमृत पीजै, दिन सरायन हर कीर्तन गाई है, सोजन जमकी वाट ना पाई है, आठ पहरो जिस विसरै नाही, गत होवै नानक तिस लग पाई, आसा महला पंजवा, जाकै सिमरण सुख निवास, पई कल्याण दुख होवत नास, आनंद करो प्रभ के गुण गावो, सतगुर अपना सद सदा मनावो, रहाओ सतगुर का सत शब्द कमावो, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावो,

हर माला और अंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाल मुख हर हर बोले, सो जन इतुत कत न डोले, कहो नानक जो राचे नाए, हर माला ता कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करे सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सपने नाहें,

उनकै संग तू गृह मैं माहर, उनकै संग तू होई है जाहर, उनकै संग तू रखी पपोल, उस बिना तू छुटकी रोल, उनकै संग तेरा मन महत, उनकै संग तुम साग जगत, उनकै संग तेरी सब थाटी, उस बिना तू होई है माटी, ओह बैरागी मरे ना जाए, हुक्मे बांदा कार कमाए, जोड़ विछोड़े नानक थाप, अपनी कुदरत जाने आप, आसा महला पंजवा, ना ओह मरता ना हम डरिया, ना ओह बिनसै ना हम कड़िया, ना ओह निरतन ना हम भूखे, ना उस दुख ना हम कौ दुखे, अवरना को मारन वारा, जियो हमारा जियो देनहारा रहाओ, ना उस बंधन ना हम बांधे, ना उस तंदा ना हम तांदे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सदकेला, ना उस सोच ना हम कौ सोचा, ना उस लेप ना हम कौ पोचा, ना उस भूख ना हम कौ तृष्णा, जाहो निर्मल ता हम जचना, हम किश नाही एक ओही, आगे पाछे एको सोई, नानक गुरखोए परम पंगा, हम ओए मिल होए एक रंगा, आसा महला पंजवा, अनक पात कर सेवा करिए, जियो प्रांतन आगे धरिए, पानी पखा करो ता जब मान, अनक बार जाइए कुर्बान, साई सुहागन जो प्रपाई, तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ, दासन दासी की पनिहार, उनकी रण बसै जी नाल, माथे भागता पावो संग, मिले स्वामी अपने रंग, जाप ताप देवो सब नेमा, कर्म धर्म अर्पो सब होमा, गर्भ मोह तज हो बोरेन, उनके संग देखो प्रभ नैन, निमख निमख एही आरा दो, दिन सरैन ए सेवा सादो, पहे कृपाल गोपाल गोबिंद, साध संग नानक बख्शिंद, आसा महला पंजवा, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना कोए, प्रभ की प्रीत हम मैं मल खोए, प्रभ की प्रीत सद निर्मल होए, सुनो मीत ऐसा प्रेम प्यार, जी प्राण कटकटे आधार रहाओ, प्रभ की प्रीत पय सगल निदान, प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभ की प्रीत सद सोभावंत, प्रभ की प्रीत समिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एहो पवजल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगल उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवा, भूपत होए कै राज कमाया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया रहाओ, निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंग रसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवा, इनस्यो प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ, ऐसी सुंदर मन कौ मोह है, बाट काट करे बन बन जो है,
ਮਨ ਤਨ ਲਾਗੈ ਹੋਏ ਕੈ ਮਿੱਠੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਖੋਟੀ ਡੀਠੀ, ਅਗਰ ਉਸਕੇ ਵੱਡੇ ਠਗਾਊ, ਛੋੜੈ ਨਾਹੀ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਊ, ਮੇਲੀ ਆਪਣੇ ਉਨਲੇ ਬਾਂਧੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ, ਅਬ ਮੋਰੈ ਮਨ ਪਇਆ ਆਨੰਦ, ਭਉ ਚੂਕਾ ਟੂਟੇ ਸਭ ਫੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਸਗਲਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਬਸਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ, ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗਸ਼ਾਰ, ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਵਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾਓ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨ ਬਿਸਰਾਮ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਤਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਬਿਨਿਆ ਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਅੱਗ ਕੱਟ ਨਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ, ਸੂਰ ਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਕੌਲਾ ਬੱਪਰੀ ਸੰਤੀ ਸ਼ਲੀ, ਤਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਬਾਂਛੈ ਸੁਰਦੇਵ, ਅਮੋਗ ਦਰਸ ਸਫਲ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵ, ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੋਹੇ ਸੰਤ ਹੈ ਟਹਿਲ ਦੀਜੈ ਗੁਣਤਾਸ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਗਲ ਸੁਖ ਜਪ ਏਕੈ ਨਾਮ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣਗਾਮ, ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ, ਜਿਸ ਭੇਟ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਪਾਵੈ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤਮਿਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਵੈ ਰਹਾਓ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਮੱਜਣ ਤਿਸ ਪੂਜਾ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤਿਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਨੀਜਾ, ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਜਾਂ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਥਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਸੋ ਜਨ ਸਗਲੇ ਭਵਨ, ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਤਾਂ ਕੀ ਪਗ ਰੇਨ, ਜਾਂ ਕਉ ਭੇਟਿਓ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਜੋੜ ਤੇ ਆਵਾਓ, ਉਨ ਸਾਧਾਂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਓ, ਮੋਹੇ ਗਰੀਬ ਕੋ ਲਿਹੋਰ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਏ ਪਏ ਸਰਨਾਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਉਦਕੇ ਸੁਨਾਨੀ, ਸਦ ਹੀ ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਸੁਗਿਆਨੀ, ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੂ ਛੋਡੈ ਨਾਹੀ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਤਿਸ ਲਾਗੈ ਪਾਈ, ਸਾਲ ਗਿਰਾਮ ਹਮਾਰੇ।

सदा बैकुंठ जहां का चवर सब ऊपर झूले ताँ का धूप सदा पर फुले काट काट संपट है रे जा का अपग सभा संग है साधा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिसही लहना संत चरण ओ आयो सरना हाथ चढ़ो हर साल गिराम कहो नानक गुर की नोदान आसा महला पंजवा पंचपदा जे पेंड लूटी पनिहारी सो मार्ग संतन दूरारी सतगुर पूरे साच कहया नाम तेरे की मुक्ते बिथी जम का मार्ग दूर रहया रहाओ जह लालच जागाती काट दूर रही ओ जनते बाट जह आवटे बहुत घन साथ पार ब्रह्म के संगी साध चित्र गुप्त सब लिखते लेखा भगत जन कौ दृष्ट ना पेखा कौ नानक जे सतगुर पूरा वाजे ता कै अरहद तूरा आसा महला पंजवा दो पदा साधु संग सिखायो नाम सर्ब मनोरथ पूर्ण काम बुझ गई तृष्णा हर जसै अगाने जब जब जीवा सारंग पाने करन करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ लाल जवेहर भरे भंडार तोट ना आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै जन कोए नानक ताकी परम गत होए आसा कर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय नित त्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मन आधार चरण कमल गुरदेव प्यारे पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जा कै मस्तक लिखिया भाग कहो नानक ता का थिर सोहाग आसा महला पंजवा मीठी आग्या पिर की लागी सौकन कर की कंत त्यागी प्रे सोहागन सिंगार करी मन मेरे की तपत हरी भलो पयो प्रे कहया मानिया सुख सहज इस कर का जानिया रहाओ हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अविनाशी अगम्या पार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचै मनमुख मूह राखा गुरु नानक बहा पकड़ हम राखा। आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसरै स्वामी इहा उहा कामना प्राणी। संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाईए गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया। सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया पंच दूत सब वसगत आया। जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान। आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे। जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह बहु ना जावे। सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे। जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिए रहाओ। जा का दान निखूट नाही भली भांत सब सह समाही। जा की बख्शना मेटै कोई मनवा साई ऐसा चा सोई। सगल समग्री ग्रह जा कै पूर्ण प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण। ओट गही निरपो पद पाई है सास सास सो गुणित गई है। दूर ना होई कतहु जाई है नजर करे ता हर हर पाई है। अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास। आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सल का होवा सुख। कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सतगुर को जाओ। गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख बिनासे सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए। अग्न बुझी

मान बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वडे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचे।

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुर अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो की जैदाना। रहाओ पागट सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा गुर बिबेक सतसार, ओह आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवा साई अलख्या पार, पोरी मन वसै दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ मन्या कुर्बान साई अपने, होवै अंध घणा मन तन जापणे। रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धणी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैण पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेद कतेब संसार हब्बा हूं बाहरा, नानक का पात साहो दिसै जाहरा।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जिन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया। रहाओ कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुरदिता, वण जारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सतगुरु हमारा। रहाओ दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइय जगद उत्तर तरी है। दृष्ट तेरी सुख पाइय मन माहे निदाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिला एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हौ चेरली सो सब ते ऊंचा, सब कीता का कांडिया थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जिसे कै उजली तिस दासी गनिया। रहाओ वे प्रवाहो आनंद मैं नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकरे सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी। रहाओ परता कह सो मानिया, एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारी है एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिशायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेटे हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपारी, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तउ लो जो मन के परमा, प्रम काटे गुरे अपने पाए विश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे। रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मेरे हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसम बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ। रहाओ सगन अप सगन तिस कौ लग है, जिस जीत ना आवे
तिस जम नेण न आवई जो हर प्रभु पावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगे पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक, दूसर कह पह जावो। हाँ मांगो आन ल जावो, सगल छत्रपत एको ठाकर। कौन समसर लावो रहाओ, उठो बैसो रह पे ना सको। दर्शन खोज खोजावो ब्रह्मादिक सनकादक, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। तिनको महल दुलभावो, अगम अगम अगाध बोध। कीमत परे ना पावो, ताकि शरण सतपुरख की। सतगुर पुरख ते आवो, पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर। काट्यो बंद गरावो, कहो नानक जो साध संग पावो। कहो नानक जो साध संग पायो, तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा, अंतर गावो बाहर गावो। गावो जाग सवारी, संग चलन कौ तोसा दीना। गोविंद नाम के व्योहारी, अवर बिसारी बिसारी।

छोड़ जाए तिन्हीं स्यों संगी साजन स्यों बैराना। सगल संसार एह बिद व्याप्यो सो उबरियो जिस गुर पूरा कहो नानक भव सागर तरियो पए पुनीत सरीरा। आसा महला पंजवा दो पदे लूक कमानो सोई तुम पेखियो मूढ़ मुग्ध मुकरानी आप कमाने कौले बांधे फिर पाछा पिछतानी। प्रभ मेरे सब दे जानी भ्रम के मूसे तू राखत परता पाछे जी की मानी रहाओ। जित जित लाए तित तित लागे क्या को करे परानी बख्स लै हो पार ब्रह्म सुमामी नानक सद कुर्बानी। आसा महला पंजवा अपने सेवक की आपे राखै आपे नाम जपावै जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठतावै। सेवक को निकटी होए दिखावै जो जो कह ठाकर पह सेवक तत्काल होए आवै रहाओ। ते सेवक कह हों बलिहारी जो अपने प्रभु भावै तिसकी सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसन आवै। आसा कर ग्यारवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नटुआ पेख दिखावै बहुबिद जैसा है ओह तैसा रे अनक जोन प्रम्यो परम पीतर सुख है नाही परवे सारे। साजन संत हमारे मीता बिन हर हरिया नीता रे सा संग मिल हर गुण गाए ओ जन्म पदार्थ जीता रे रहाओ।

कृपा पाए सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मंदर लाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब तजी मने की काम करा चिर चिर चिर चिर भया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनो दिखावो मोहे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवां को बिखमगार तोरै आस प्यास तो हो।

उन गोविंद गावो, अंत दिनो प्रभ त्यावो, भ्रम पीत जीत मिटावो, निज नाम नानक मोरै आसा महला पंजवां। काम क्रोध लोभ त्याग, मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल काम। रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया, जप राम राम राम, मन संतना कै चरण लाग। प्रभ गोपाल दीन दयाल, पतत पावन पार ब्रह्म, हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग, आसा महला पंजवां। हरख सोग बैराग आनंदी, खेल दी दिखायो रहाओ। खिनहू पै निरपै खिनहू, खिनहू उठतायो, खिनहू रस भोगन खिनहू, खिनहू तजायो। खिनहू जोग ता बौ पूजा, खिनहू परमायो, खिनहू कृपा साधु संग, नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवां, कर सतारवां, आसावरी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कया सोचित धर हां, अनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां, पग नहीं चले हर हां, गहड्यो मूड़ नर हां, अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरन पैरी सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रिव समसर हां, अंतर एक पिर हां, बाहर अनेक तर हां। राजन योग कर हां, कहो नानक लोग या लोगीरी सखी, आसावरी महला पंजवां। मनसा एक मान हां, गुरस्यो नेत ध्यान हां, दृढ़ संत मंत ज्ञान हां, सेवा गुरचरान हां, तो मिलिया गुर कृपान में।

जीवन मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हम बलिहारी सदगुर चरना, गुर बोहिथ शब्द पै तरना, निरपो आप निरंतर जोत, बिन नामे सूतक जगशोत, दुर्मत बिन सै क्या कह रोत, जन मुवे बिन पग सरोत, मुवे कहो सच रोवे मीत, त्रैगुण रोवे नीता नीत, दुख सुख पर हर सहज सोचीत, तन मन सौ पौ कृष्ण प्रीत, पीतर एक अनेक असंख, कर्म धर्म बहुसंख असंख, बिन भय भगति जन बिरंथ, हर गुण गावे मिल परमारंथ, आप मरे मारे पी आप, आपो पाए थापो थाप, सृष्टि उपाई ज्योति तू जात, शब्द विचार मिल नहीं प्रात, सूतक अगन पखे जा खाए, सूतक जल थल सभी खाए, नानक सूतक जन्म मरी जय, गुरप्रसादी हर रस पी जय, राग आसा महला पहला, आप विचारे सो परखे हीरा, एक दृष्ट तारे गुरपुरा, गुरमाने मनते मंतीरा, ऐसा सहो सराफी करे, साची नजर एक लिवतर रहाओ, पूंजी नाम निरंजन सार, निर्मल साजरता पैकार, सिफत सहज कर गुर करतार, आसा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कह कहाए, गुरते वाट महल कर पाए, कंचन काया ज्योता नूप, त्रिपवन देवा सगर स्वरूप, मैं सोतन पल्ले साचा खूट, पंच तीन नवचार समावे, तारण गगन कल तार रहावे, बाहर जात उल्ट परावे, मूर्ख होए न आखी सूजे, जेवा रस नहीं कया बूजे, बेका माता जस लूजे, उत्तम संगति उत्तम होवे, गुण कौता वै अवगुण धोवे, बिन गुर सेवे सहज ना होवे, हीरा नाम जिवे हर लाल, मन मोती है तिसका माल, नानक परख है नजर निहाल, आसा महला पहला, गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान, गुरमुख मैली मैल पछान, गुरमुख सुरत शब्द निशान, ऐसे प्रेम भक्ति विचारी, गुरमुख साचा नाम मुरारी रहाओ, अह निस निर्मल थान सुथान, तीन पवन ने केवल ज्ञान, साचे गुरते हुक्म पछान, साचा हरख नाही ते सोग, अमृत ज्ञान महारस भोग, पंच समाई सुखी सब लोग, सगली जोत तेरा सब कोई, आपे जोड़ बिछोड़े सोई, आपे करता करे सो होई, टाहे ओ सारे हुक्म समावे, हुक्मे वरतै जोत इस पावे, गुर बिन पूरा कोई न पावे, बालक बिरद ना सुरत प्राण, पर जोगन बूढ़ा अभमान, बिन नामे क्या लैस निदान, जिसका अंतन सहज न जाना, परम पुलाना फिर पछताना, गल फाही बौरा बौराना, बूढ़त जाग देखिया तो डर भागे, सतगुर राखे सेवड भागे, नानक गुर की चरणी लागे, आसा

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खोइत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लाभ लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन मैल ना पछाण। निरंकार मै आकार समावे अगल कला सा साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले तै जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता। मेरा प्रभ लाए ता को लागे हो मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुख आगे। मन चंचल बिद नाही जाने मन मुख मैला शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। किल विख दो काटे हर नाम परगास कर बीचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लै कर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मल अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बक्से सदगुर मिलै काल कंटक मारे सच पेलै। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा साक्त लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपतापै गुरमुख चीने हर प्रभ आपै। मन बैरागी हो मैं त्यागी कटकट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखै। दर कर महली हर पत राखै। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम। मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास एक तथाए किए। गुरमुख राग स्वाद्यन त्यागे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे। अनहद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई। अह निस हर जस गुर प्रसाद घड़ घड़ सो प्रभ आ जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास संदासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो। आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा। जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला ज्यो भावे त्यो रख दयाला। गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता। तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख विण गुर शब्द जन्म के लेख। देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भर पुर तार रहे मन माही तुम समसर अवर को नाही। जाकी भक्त हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि त्यान छूटे गुरमुखार गुर ज्ञान। ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पै हर रंग। आसा महला पहला एक तुगी गुर सेवे सो ठाकर जाने दुख मिटे सत शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार।
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पोतो कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किसान। हो मैं डन सह राजा मंगे दान। बंधन सौदा अन विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी। बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेदबाद हंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरण आई, सतगुरु राखे बंध ना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां कर तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर। से सरकाती मुनियां, गल विच आवे धूड़। महलां अंदर होंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया। कर कर देखै वेस रहाओ। जदों सियां वी आहियां, लाड़े सोहन पास। ही डोली चढ़ आईयां, दंद खंड कीते रास। उपरों पानी वारी है, चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़ियां। गरी शोहारे खांदियां, मन से जड़ियां। तिन गल सिलका पाईया, टुटन मोसरिया। धन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए। जे तिस पावे दे वड्याई, जे पावे दे सजाए। अगों दे जे चेती है, तां कायत मिले सजाए। साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमा सह चाहे। बाप रवाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए। इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए। चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड़े नाए। राम न कबहू चेत्यो, हुण कहण ना मिले खुदाए। एक घर आवे अपने, एक मिल मिल पुछे सुख। इक ना एहो लिखिया, बैबै रोवे दुख। जो तिस पावे सोथी है, नानक क्या मानुख। आसा महला पहला, कहां सो खेल तबेला कोड़े। कहां पेरी सहनाई, कहां सो तेग बंद गाढ़ेरड़। कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मोबंके। ऐथे दिसै नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई। एक कड़ी मैं थापो थापे, जरवण देवै पाई रहाओ। कहां सो घरदार मंडो मेला, कहां सो बंकसराई। कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। कहां सो पान तंबोली हरमा, होइया शाही माई। इस जर कारण कणी मगुती, इन जर कणी खुवाई। पापा बाजो होवे नाही, मुया साथ ना जाई। जिसनो आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई। कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया। थान मुकाम जले बिजमंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा, किनना परचा लाया। मुगल पठाना पई लड़ाई, रण में तेग बगाई। ओनी तुपकतान चलाई, ओनी हस चढ़ाई। जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिन्ना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी, पटियाणी ठकराणी। एक ना पेरन सिर खुर पाटे, एक ना वास मसाणी। जिनके बंके करी ना आया, तिनक्यो रैण विहानी। आपे करे कराए करता, किसनो आख सुनाई है। दुख सुख तेरा पाना होवे, किसथे जाई रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै, नानक लिखिया पाई है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा काफी महला पहला। कर अठवां अष्टपदिया, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। कूड़ कमावे आदमी बंद है कर बारा। जागो जागो सूते हो, चले अवन जारा रहाओ। नीत नीत कर बांधी है, जे रहना होई। पिंड पवे जियो चल सी, जे जाने कोई। ओही ओही क्या करो, है होसी सोई। तुम रोवोगे ओसनो, तुम कहो कौन रोई। धंधा पिटो पाई हो, तुम कूड़ कमावो। ओह ना सुनई कत ही, तुम लोग सुनावो। जिसते सुता नानका, जागा ए सोई। जे कर बुझे अपना, तानी दना होई।
ਜੇ ਚਲਦਾ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਕੇ ਸੰਪੈ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤਨ ਸੰਚੋ ਦੇਖ ਕੇ ਬੂਝੋ ਵਿਚਾਰੇ ਵਣਜ ਕਰੋ ਮਕਸੂਦ ਲੈ ਹੋ ਮਤ ਪੱਛੋ ਤਾਵੋ ਔਗੁਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਰਹੋ ਐਸੇ ਤਤ ਪਰਾਵੋ ਧਰਮ ਭੂਮ ਸਤ ਬੀਜ ਕਰ ਵੈਸੀ ਕਿਰਸ ਕਮਾਵੋ ਤਾਵਾਂ ਪਾਰੀ ਜਾਣੀਓ ਲਾਹ ਲੈ ਜਾਵੋ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ਸੁਣੇ ਨਾਮ ਨਾਮੇ ਵਿਵਹਾਰਾ ਜਿਉ ਲਾਹਾ ਤੋਟਾ ਤਿਵੈ ਵਾੜ ਚਲਦੀ ਆਈ ਜੋਤਿ ਸਪਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਵਡਿਆਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਟੁੰਡੀਆਂ ਕੋ ਨਿਮੀ ਮੈਂਡਾ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸਾਹਿਬਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹਉ ਤੈਂਡਾ ਦਰ ਬੀਬਾ ਮੈਂ ਨੀਮ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੀ ਸਲਾਮ ਹੇਕੋ ਮੈਂਡਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਨਾਮ ਰਹਾਓ ਸਿੱਧਾ ਸੇਵਨ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਮੰਗੈ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸਾਚੇ ਗੁਰਬੁੱਧ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਕਾਪੜੀ ਕਿਆ ਭਵੈ ਦਸੰਤਰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਚੀ ਨਹੀਂ ਤਤ ਸਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪੰਡਿਤ ਪਾਂਦੇ ਜੋ ਇਸੀ ਨਿਤ ਪੜੈ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਤਰ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਘੜ ਬ੍ਰਹਮ ਲੁਕਾਣਾ ਇੱਕ ਤਪ ਸੀ ਬਨ ਮੈਂ ਤਪ ਕਰੈ ਨਿਤ ਤੀਰਥ ਵਾਸਾ ਆਪ ਨਾ ਚੀਨੈ ਤਾਮਸੀ ਕਾਹੇ ਪਏ ਉਦਾਸਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਜਤਨ ਕਰ ਰਾਖ ਦੇ ਸੇ ਜਤੀ ਕਹਾਵੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੁਟਹੀ ਭ੍ਰਮ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਇੱਕ ਗਿਰਹੀ ਸੇਵਕ ਸਾਧਕਾ ਗੁਰਮਤੀ ਲਾਗੇ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹਰ ਭਗਤ ਸੋ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਤੇ ਦਰ ਕਰ ਜਾਣੀਐ ਸੋ ਜਾਏ ਸਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸਾਚੇ ਮਨਮਾਨੈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਸਮਾਏ ਲੇ ਭਉ ਜਲ ਸਜ ਧਰਣਾ ਆ ਜੁਗਾ ਦਿਆਲ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ਤੂੰ ਦਾਤੋ ਹਮ ਜਾਚਕਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੰਦਰ ਪੀਜੈ ਰਹਾਓ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੋਡੀਐ ਤੋ ਸਾਚ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥ ਜਾਣੈ ਇਹੋ ਮਨ ਰਾਜਾ ਲੋਭੀਆ ਲੁਭਤੋ ਲੋਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਭ ਨਿਵਾਰੀਐ ਹਰਸਿਉ ਬਣਿਆਈ ਕੱਲਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀਐ ਕਿਉਂ ਲਾਹਾ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਸੱਚ ਨਾ ਪੀਜਈ ਕੂੜ ਕੂੜ ਗੜਾਵੈ ਲਾਲਚ ਛੋਡੋ ਅੰਧੇ ਹੋ ਲਾਲਚ ਦੁਖ ਭਾਰੀ ਸਾਚੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖਮਾਰੀ ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਕੁਵਾਟੜੀ ਮੂਸੋ ਗੇ ਭਾਈ ਅਹਿਨਸ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਮਨਮੁਖ ਪੱਥਰ ਸੈਲ ਹੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਫੀਕਾ ਜਲ ਮੈਂ ਕੇਤਾ ਰਾਖੀਐ ਅਬ ਅੰਤਰ ਸੂਕਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੱਲੇ ਚਲਣ ਹਾਰ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ਤੰਦ ਪਿਟੇ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਆ ਭਵੀਐ ਕਿਆ ਢੂੰਡੀਐ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਵਿਸਰਜਿਆ ਆਪਣਾ ਕਰ ਆਇਆ ਰਹਾਓ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜ ਨਾ ਪਾਈਐ ਸੱਚੇ ਸਿਉਚ ਤਲਾਏ ਬਹੁ ਨਾ ਆਈਐ ਮੋਇਆ ਕਹੋ ਕਿਆ ਰੋਵੋ ਰੋਏ ਨਾ ਜਾਣ ਹੂੰ ਰੋਵੋ ਸੱਚ ਸਲਾਏ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਹੂੰ ਹੁਕਮੀ ਵਜੋ ਲਿਖਾਏ ਆਇਆ ਜਾਣੀਐ ਲਾਹਾ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹੁਕਮ ਸਿਆਣੀਐ ਹੁਕਮੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਦਰਗਹਿ ਪਾਣੀਐ ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਰਵਾਰ ਬਾਂਦਰ ਬਾਣੀਐ ਲਾਹਾ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਮਨ ਵਸਾਈਐ ਲਿਖਿਆ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਗਰਵ ਵਜਾਈਐ ਮਨ ਮੁਖੀਆ ਸਿਰ ਮਾਰ ਵਾਧ ਖਪਾਈਐ ਠੱਗ ਮੁੱਠੀ ਕੂੜਿਆਰ ਬਨ ਚਲਾਈਐ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ਨਾ ਪੱਛੋ ਤਾ ਵਹੀ ਗੁਨਹਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਵਹੀ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲੀਐ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਆ ਜੰਗਲ ਢੂੰਡੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਰ ਬਨ ਹਰੀ ਆਵਲਾ ਸੱਚ ਟਿਕੈ ਕਰ ਆਏ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਵਲਾ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੀਐ ਰਹਾਓ ਆਪ ਮਿਲਾਵੈ ਸੱਚ ਤਾ ਮਨ ਭਾਵਈ ਚੱਲੈ ਸਦਰ ਜਾਏ ਅੰਕ ਸਮਾਵਈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਈ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਹ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਈ ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿਉਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਪੱਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਚੜੈ ਪਰ ਨਾਲ ਬੁਡਾਵੈ
ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚੀਐ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪਛਾਣੀਐ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਾਲੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਆਖੀਐ ਤਿਨ ਕਰਤੈ ਕੀਆ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਮਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਥੀਆ, ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰਕੀ ਫੁਰਮਾਈ, ਜੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲੈ ਕਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਰਤਨਾ ਪਾਰਖ ਸੋ ਧਣੀ ਤਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਨੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਮੂਲ ਛੋੜ ਡਾਲੀ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਪਾਵੈ ਸ਼ਾਈ।

पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो ने है साध तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तुद पावै सो भला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ भेटे परमानंद। आसा महला पंजवां बिरहड़े कर चौथा शंता की जात एको अंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ सिमरिय प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत सुख जिस सिमरत दुख भी सरै प्यारे सो क्यों तजना जाए एहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए सुख सिंगार बिख्या के फीके ता छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरणी पाए जो जन राते राम सिंह प्यारे अंत ना काहू जाए हर जिन्नी चाख्या प्यारे तृप्त रहे गाए अंचल गहया साधका नानक पैव सागर पार पराए जन्म मरण दुख कटिया प्यारे जा पेटे हर राय सुंदर सुगड़ सुजान प्र मेरा जीवन दर्श दिखाए जो जी तुझते बिछरे प्यारे जन्म मरे बिख खाए जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिसके लागो पाए जो सुख दर्शन पेखते प्यारे मुक्ते कहन न जाए साची प्रीत ना टुटई प्यारे जो जुग रही समाए जो तुद पावे सो पला प्यारे तेरी अमर रजाए नानक रंग रते नारायण प्यारे माते सही सुभाए साबे तुम ही जानते प्यारे किस पे कहो सुनाए।

क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय जिसकी वस्त सो लै जाए जियो मन मुख करण पलाव कर भर में सब औखद दारू लाए जियो जिसकी वस्त प्रभले सुमामी जन उपरे शब्द कमाए जियो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जंप करै लै जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वडियाई हर दरगह पैंदे जान जियो हर दरगह पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख मेटे हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे हर हर ध्यान जियो जग उपजै बिनसै बिनस बिनासै लग गुरमुख असर होए जियो गुर मंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए हर अमृत हर मुख चोए जियो हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया फिर बाहुड़ मरण ना होई हर हर नाम अमर पद पाया हर नाम समावै सोई जन नानक नाम आधार टेक है बिन नाम है अवर ना कोए जियो जग उपजै बिन सै बिनस बिना सै लग गुरमुख अस्त्र होए जियो आसा महला चौथा शंत वड्डा मेरा गोविंद अगमा गोचर आद निरंजन निरंकार जियो तां की गत कही ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद लाख्या पार जियो गोविंद लाख्या पार परंपरा पे अपना जाने क्या है जंत विचारे कही है जो तुद आख वखाण है जिसनो नजर करे तू अपनी सो गुरम करे विचार जियो वड्डा मेरा गोविंद अगमा गोचर आद निरंजन निरंकार जियो तू आद पुरख परंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो तू घटकड़ अंतर सर्व निरंतर समय रहा समाये जियो घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ता कांत न पाया तिस रूप न रेखा देटा गोचर गुरमुख लख लखाया सदा आनंद रह दिन राती सहजे नाम समाये जियो तू आद पुरख परंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो तू सत परमेश्वर सदा बनासी हर हर गुणी निधान जियो हर हर प्रभे कोई अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो पुरख सुजान तू प्रधान तो जे वड़े अवर ना कोई तेरा शब्द सब तू है वरतै तू आपे करै सो होई हर समय रव्या एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निधान जियो सब तू है करता सब तेरी वड्याई ज्यो पावै तवै चलाए जियो तुद्या पे पावै तवै चलावै सब तेरा शब्द समाए जियो सब शब्द समावै जा तुद पावै तेरा शब्द वड्याई गुरमुख बुद्ध पाई है आप गवाई है सब दे रहा समाई तेरा शब्द अगो

ज्यों पावै त्वै चलाए जियो। एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा। हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतना। राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सोविना। गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो पिना। जन नानक मुस्क चकोलिया सब जन्म तन तन्ना। हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया। राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया। जीवन मुक्त सो आखिया मर जीवै मरिया। जन नानक सतगुर मेल हार जगद उतर तरिया। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे। गुरपूरै हर पाया हर भगत एक मंगा। मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अंत तरंगा। मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा। दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभर राया राम राजे। हाँ मांगाऊं शरण हर नाम की हर हर मुख पाया। भगत वचल हर बिरद है हर लाज रखाया। जन नानक शरणागति हर नाम तराया। आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडेंदिया। हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा।

जल जल रोवै बपड़ी, चढ़ चढ़ पवै अंगयार, नानक जिन करतै कारण किया, सो जाणै करतार। पौड़ी बिन सतगुर कने ना पायो, बिन सतगुर कने ना पाया, सतगुर विच आप रखियो नु कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया, उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिउ चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला, हों विच आया हों विच गया, हों में जमया हों विच मुआ, हों में दिता हों विच लया, हों विच खटिया हों विच गया, हों विच सत्यार कूड़ियार, हों विच पापुन विचार, हों विच नरक सुरग अवतार, हों विच हसै हों विच रोवै, हों विच भरियै हों विच धोवै, हों में जाति जन सीखोवै, हों विच मूर्ख हों विच सियाणा, मोख मूत की सार ना जाना, हों विच माया हों में छाया, हों मैं कर कर जन तो पाया, हों मैं बूझै तांदर सूझै, ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै, नानक हुक्मी लिखिया लेख, जेहा वेखै तेहा वेख, महला दूजा हों मैं यहा जात है, हों मैं कर्म कमाहे, हों मैं एही बंदना फिर जोनी पाहे, हों मैं किथों उपजै कित संजम एह जाए, हों मैं एहो हुक्म है पया किरत फिर आहे, हों मैं दीर्घ रोग है दारू पिय समाहे, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे, नानक कह सुनो जना इत संजम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखी, जिनी सचो साहित्य आया, उन्नी मंदै पैर न रखियो कर सुकिरत धर्म कमाया, ओनी दुनिया तोड़े बंदना, अन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शी सी अगला नित देवै चढ़ै सवाया, वड्याई वड्डा पाया। श्लोक महला पहला, पुरखां बिरखां तीर्थां तटां मेघां खेतां, दीपां लोवां मंडलां खंडां वरपंडां, अंडज जेरज उत्पजा खानी सेत जाहां, सुमत जाने नानका सरा मेरा जनता हां, नानक जन तो पाए कै संभाले सब नाहा, जिन कर तय करना किया चिंता पे करनी ताहा, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणिया पग, नानक सच्चे नाम बिनु क्या टिका क्या तग। महला पहला, लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवान, लख तप उपर तीर्थां सहयोग बेबाण, लख सुरतन संग्राम रण में छुटै प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ पुराण, जिन करता करना किया लिखिया आवन जान, नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। पौड़ी सच्चा साहब एक तू जिन सचो सच वरताया, जिस तू देह तिस मिलै सच ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया। श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास, पढ़िया जेती आरजा पढ़िया जेते सास, नानक लेखै एक गल होर हों मैं चखना चाख। महला पहला, लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या, बहु पेह किया देही दुख दिया, सोहवे जिया अपना किया, अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, बस्तर ना पहरै एनस कहरै, मोन विगूता क्यों जागै गुरबिन सूता, पग उपे ताणा अपना किया कमाणा, अलमल खाई सिर शाही पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई, विण ना वै किश थाए ना पाई, रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध ना जाणै फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आसान देसे ते नह केवल, हों मैं शब्द जलाए। पौड़ी
ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਨੀ ਧਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਜੈ ਧਿਆਏ ਦੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਵੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੁਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਿਹੋਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰੈਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੈ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈਐ ਫਲਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਾ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਾਲ ਕਾਲ ਖਬੇ ਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਪ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰੱਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤਪੁਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करै प्यार, धर्मी धर्म करै गावावै मंगै मुख द्वार, जति सदावै जुगत न जाणै छड़ बह करवार, सबको पूरा आपे होवै घट ना कोई आखै, पथ परवाणा पिछे पाईऐ ता नानक तोलिया जापै, महला पहला वदी सवजग नानका सच्चा वेखै सोए, सबनी छाला मारियां करता करे सोहे, अगै जात ना जोर है अगै जियो नवे, जिनकी लेखै पथ पवै चंगे से ही के पौड़ी, तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया, एना जनता कै वस किश नाही तुद वेकी जग तो पाया, एक नानो तू मेल लै एक आपो तुद खवाया, गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदया बुझाया, सहजे ही सच समाया। सलोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पाया, जा सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं नाही जा हों करी ना होई, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया, रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहेब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बातां, जो किश करना सो कर रहया, महला दूजा जोग सबदं ज्ञान सबदं वेद सबदं ब्राह्मण, खत्री सबदं सूर सबदं सूद्र सबदं प्राकृत, सर्व सबदं एक सबदं जे को जाने पेओ, नानक ताका दास है सुई निरंजन देओ, महला दूजा एक कृष्णं सर्वदेवा देव देवा ताया।

जित दरगह गया हारी है, पढ़िया अतः उमिया विचार गै विचारी है, मोह चले सो अगै मारी है। सलोक महला पहला, नानक मेरे शरीर का एक रथ वाह हो, जो जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझै ताहे। सत युग रथ संतोख का, धर्म अगै रथवा हो, तेरे तै रथ जतै का जोर अगै रथवा हो। द्वापर रथ तपै का, सत अगै रथवा हो, कलयुग रथ अगन का कूड़ अगै रथवा हो। महला पहला, साम कह से तंबर स्वामी, सच मैं अच्छ साच रह, सबको सच समावे रिग कह रहया परपूर, राम नाम देवा मैसूर। नाय लय प्राहित जाहे, नानक तौमो खंतर पाहे, जुज मैं जोर शली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम भया, पार जात गोपी लै आया, बिंद्रावन मैं रंग किया। काल मैं बेदा थरबण हुआ, नाव खुदाई अलहो पया, नील बसर ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया। चारे वेद

पौड़ी सतगुर विट्टो वारिया जित मिले खसम समालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोए था विरलै कने विचारिया कर कृपा पार उतारिया। सलोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे आवै आस कर जाहे निरासे कित फल फिके फुल बक बके कम न आवै पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत सब को निवै आप कहो पर कहो निवै ना कोए धर तराजू तोली है निवै सो गौरा होए अपराधी दूना निवै जो हंता मिर्गा हे सीस निवाया क्या थी है जा हृदय सुदे जाहे। महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समादं मुख झूठ विपुखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लिलाटं दोय धोती बस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोक निश्चो कर्मं कहो नानक नहचो त्यावै विण सतगुर वाट ना पावै पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाम दे राहे पीड़ै अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसै खरा डरावना करे उगण पछोतावना। सलोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एहो जने उजी का है ता पांडे कत ना एहो टुटै ना मल लगै ना एहो जलै ना जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौकै पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया। महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी नाल तग कपाहो कती है बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आखै पाए होए पुराना सुटिया पी फिर पाई है होर नानक तग न टुटई जे तग होवै जोर। महला पहला नाए मने पातू पजै साला ही सच सूत दरगै अंदर पाई है तग ना टूट सपूत। महला पहला।

करे कम आण ना सकै रास, जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास। पौड़ी चाकर लगै चाकरी, जे चलै खसमै पाए, हुरमत तिसनो अगली ओ वजो पे दूना खाए। खसमै करे बराबरी, फिर गैर ते अंदर पाए, वजो गवाए अगला मोहे मोहे पाणा खाए। जिसदा दिता खावना तिस कही ऐसा वास, नानक हुक्म न चलई नाल खसम चलै अरदास। श्लोक महला दूजा। एक नहीं दात आपस ते जो पाई है, नानक सा करमात साहेब तुठै जो मिलै। महला दूजा। एक नहीं चाकरी जित पौ खसम ना जाए, नानक सेवक कंडी है जे सेती खसम समाए। पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ताके पारा वार, आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार, आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार। नानक करना जिन किया फिर

दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जियो के चौपदे एक तुके सनक सनंद।

जे अत क्रोप करे कर ताया ता पी चीत ना राख समाया चिंत पवन मन परयो हमारा नाम बिना कैसे उत्तर सपारा देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा आसा हज हमारी गोमती तीर जहां बसै पीतंबर पीर वाहो वाहो क्या खूब गावता है हर का नाम मेरे मन पावता है रहाओ नारद सारद करै खवासी पास बैठी बीबी कबला दासी कंठे माला जेवा राम सहंस नाम लै लै करो सलाम कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुर्क दऊ समझावो आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरै मलनी पाती पाती जियो जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो पूली मालिनी है ओ सतगुर जागता है दे ओ रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी फूल शंकर दे ओ तीन देव प्रतख तोरै करै किसकी से ओ पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गण नहारे खाओ पात पहत यार लापसी कर करा का सार भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार मालन पूली जग पुलाना हम पुलाने नाहे कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आसा बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कष्टप ना कियो तीस बरस कष देवन पूजा फिर पछताना बिरद पयो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भुजंग बलियो रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथ वार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुक्त फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बह जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै तब रे धर्म की आस करे हर जियो कृपा करे लिव लावे लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चलद्या नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछु लै ना गयो आई तरब गोपाल राय की माया मंदिर छोड़ चलियो आसा काहू दीने पाठ पटंबर काहू पलंग निवारा काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा अहे रखवाद ना कीजै रे मन सो किरत कर कर

ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पायो, अस बट भाग हमारा। सोर नार मुन जन कौत के आए, कोट ते तीसो जाना, कह कबीर मोए ब्याय चले है, पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी, ससर की प्यारी, जेठ के नाम डराओ रे, सखी सहेली ननद गहेली, देवर कै ब्रह जराओ रे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारे, ओ किन बिद रहन रहो रे, सेजा रम तो नैन नहीं पेखो, एहो दुख कासो कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लड़ाई, माया सदमतवारी, बड़े भाई कै जब संग होती, तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को झगरा, जगत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधया, मैं राम रमत सुख पाया। आसा हम कर सूत, तने नित ताना, कंठ जने उतमारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे, मेरी जेहबा बिसन नै।

हम गोरु तुम ग्वार गोसाई जन्म जन्म रखवारे कबहू ना पारो तार चरायो कैसे खसम हमारे तू बामन मैं कास

गया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्व भूत एक कर जानिया, चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पै राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे अल्लाओ, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे को चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ। साजक ते बखान अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुणे नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई। अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी, हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी। आसा ते पदा एक तुगा,

ज्यो तन चीरा अंग न मोरो, पिंड पर तो प्रीत न तोरो, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत न हुई आसा। कोरी को कहूं मर्म न जाना, सब जग आनत ना होता ना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे ताना। तरने आकाश की कर गए बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी, तै तांती मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पिछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सुते सुत मिलाए कोरी आसा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ ना जाना। लोकपतीने कछु ना होवे, ना ही राम एना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा रहाओ। जल कै मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढक नावे। जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरै बानारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरै हाड़म्बै, ता सगली सैन तराई। दिन सनारैन बेद नहीं शास्त्र।

कि एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र बिमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मान सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अरफेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो। जतर जाओ तत बीठल पहला महा

आसा से फ्री जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद। दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीये रहाओ। आप लिए लड़ लाए दर दर वेस से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। पर्वत गारिया पार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुमा पैर मूह। तेरी पने खुदाए तू बख्शंदगी, सेख फरीद ऐ खैर दी जय बंदगी। आसा बोले सेख फरीद प्यारे अल्लह लगे, एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे। आज मैं लावा सेख फरीद टाक मकुंजड़ियां, मनोम चिंदड़ियां रहाओ। जे जाना मर जाइए घुम ना आईए, झूठी दुनिया लग ना आप वजाइए। बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुर दसै वाट मुरीदा जोलिए। शैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया, कंचन मन्ने पासे कलवत चीरिया। सेख है आती जग ना कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां, सियाले सोहंदियां पिर गल बाहड़ियां। चले चलन हार विचारा ले मनो, गंडें दियां छे मां तुड़न दियां हिक खिनो। जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए, जालन गोरा नाल उलामे जी सहे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद। राग गुजरी महला पहला, चौप दे कर पहला। तेरा नाम करी चन नाठिया, जे मन उरसा होए करनी कुंगू जे रल है कट अंतर पूजा होए। पूजा की चै नाम ते आई है, बिन नावे पूजना होए रहाओ। बाहर देव पखाली है, जे मन तो वह कोए, झूठ लह जियो मन जी है मोख पयाना होए। पशु मिले चंगे आईया, खड़ खावे अमृत दे। नाम विहुने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। नेड़ा है दूर ना जाने आओ, नित सारे संभाले। जो देवे सो खावना, कहो नानक साचा है। गुजरी महला पहला, नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे। वेद पड़े मुख कंठ सवार, ताको अंतना जाई लखना।

कड़ी मोहतन है विसरा नानक रवि है नित पौड़ी सूर बीर वरियाम केने ना होड़ी है फौ सतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनके वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवा किलविख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कले साई उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवा नानक सतगुर भेटे है।

पौड़ी सो सतगुर तन तानो जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया, नाम निदान या खुट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ। पाया नाम निदान बहुत खजाने आ, जिता जन्मया पार आप पछाने आ, महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव। सलोक महला पंजवा, उद्यम करेंदिया जियो तू कमावदे।

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रग राई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जो भीख मंगावै ता क्या कट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै तसै बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किसह पूजो दूजा नजर न आई। एकै पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरियै पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछै पार मलो, परम लियो बैठो री आई। आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कह किन बूझी है, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश है पंखिया लो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजे मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यो आकाश कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिन तीने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछर थनो बिटारियो, फूल पावर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिखे अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोचन।

काहे भया सन्यासी परमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं कीन्या परमानंदा रहाओ। घर घर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत ना पाया। काए जपोरे काए तपोरे काए बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडलो कापड़ियारे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा घर चौथा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमंग सत आद भाव रतंग परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छ सजमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तर शरणं हर भगत निज नेह केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं पवपूत सर्वगतं एक ओवंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपंग गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्रभु।

कित गली हर के संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाल चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अर, एह चाल बनी है भली। लटरी मदरी ठाकर पाई, ओह सुंदर हर ढोल मिली। एको प्रेओ सखिया सब प्रे की, जो पावे पिरसा भली। नानक गरीब क्या करे बिचारा, हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू लै राती। हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरो दीवानी आवल बावल, तिस कारण हर ढोली है। कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना, हरे अमृत पी झोली है। गुर प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार।

साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर्मानो मन में ओ सुख धारो। गुण गावे ठाकरे अबनासी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए और तारो। देवगदारी महला पंजवा प्रभ जीओ पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर ध्यान तादर रहनी जी प्राण ते प्यारा रहाओ। शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत् विचारा दीनानाथ प्राण पथ पूर्ण भाव जल उदर नहारा। आद जुगाद भगत जन सेवक ताकी बिखै आधारा तिन जन की धूर बांछै नित नानक परमेश्वर देव नहारा।

प्रेम रसाने जाको उपजी छोड़ न कतहू जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी

अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई रहाओ मोह रोग सोग तन बांधो बोजोनी परमाई है टिकन ना पावे बिन सतसंगत किसी आगे जाय रुआई है करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन भीतर नानक हर दर्श समाई है देवगंधारी महा

हाँ कर्च तराई बिस्मन बिस्मे कहन कह आहत गण गंधर्व सिद्ध अर साधक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक।

दुख रोग ना पहु ब्यापै, जिन्नी हर हर त्याया, संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया। वजी वधाई मनसा ते आई, मिलिया पुरखिया पारी, बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छ पुनी हमारी। बिहागड़ा महला पंजवा, कर दूजा एको अंकार, सतनाम गुरप्रसाद। वद सुख रै निड़िए, प्रे प्रेम लगा, घट दुख नींदड़िए, परसौ सदा पगा। पग तूर बांछो सदा जाचो, नाम रस बैरागनी, प्रेरंग राती, सहज माती, महा दुर्मत त्यागनी। गह पुजा लीनी, प्रेम पीनी, मिलन प्रीतम सच मगा, बिनवंत नानक तार कृपा, रहो चरण संग लगा। मेरी सखी सहेलड़ियो, प्रभ कै चरण लगे, मन प्रे प्रेम कणा, हर की भगत मंगे। हर भगत पाईए, प्रभ ते आईए, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना। बड़ पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण, प्रभ प्रीत हर हर मिल पगे, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जपै। हर नार सुहागणे, सब रंग माणे, रांड ना बैसई, प्रभ पुरख चराणे, न दुख पावै, प्रभ ते आवै। तन ते वट पागिया, सुख सहज सोवै, किल बिख खोवै, नाम रस रंग जागिया। मिल प्रेम रहना, हर नाम गहना, प्रे बचन मीठे पाने, बिनवंत नानक मन इच्छ पाई, हर मिले पुरख चराने। तित ग्रह सोहलड़े, कोड नंदा, मन तन रव रहया, प्रभ परमानंदा। हर कंत अनंत, दयाल श्री तर, गोविंद भक्त उदारनो, प्रभ कृपा धारी, हर मुरारी, पै सिंध सागर तारनो। जो सरन आवै, तिस कंठ लावै, एहो बिरद स्वामी संदा, बिनवंत नानक हर कंत मिलिया, सदा केल करंदा। बिहागड़ा महला पंजवा, हर चरण सरोवण, तै करो निवास मना, कर मज्जन हर सरे, सब किल विख नास मना, कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन, दुख अंधेरा नासे। जन्म मरण ना होए तिस कौ, कट्टै जमके फासे, मिल साध संगे नाम रंगे, तहां पूर्ण आसो। बिनवंत नानक धार कृपा, हर चरण कमल निवासो। तह आनंद बिनोद सदा, अनहद चुनकारो राम। मिल गावै संत जना, प्रभ का जयकारो राम। मिल संत गावै खसम पावै, हर प्रेम रस रंग पिनिया। हर लाभ पाया आप मिटाया, मिले चिरी विछुनिया। गह पुजा लीने, दया कीने, प्रभ एक अगम्या पारो, बिनवंत नानक सदा निर्मलो, सच शब्द रुण चुनकारो। सुन वड भागिया, हरे अमृत बाणी राम, जिनको कर्म लिखी तिसरदै सुमाणी राम। अकथ कहानी तिन्नी जानी, जसिया प्रभ कृपा करे, अमृतिया फिर ना मुआ, कल कले साधुख हरे। हर शरण पाई तज ना जाई, प्रभ प्रीत मंतन पाणी, बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी। मन तन गलत पए, किश कहन ना जाई राम, जिसते उपजियाड़ा तिन लिया समाई राम। मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती, उदक उदक समाया, जल थल महियल एक रविया, न दूजा दृष्टाया। बन त्रिण त्रिपवन पूर पूर्ण, कीमत कहन ना जाई, बिनवंत नानक आप जाने, जिन एह बणत बनाई। बिहागड़ा महला पंजवा, खोजत संत फिरै, प्रभ प्राण आधारो राम। तान तन खीन पया, बिन मिलत प्यारे राम, प्रभ मिलो प्यारे मया तारे, कर दया लड़ लाई लीजिए। देह नाम अपना जपो स्वामी, हर दर्श पेखे जीजिए,
समर्थ पूर्ण

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरनाराम, तपत न कतै बुझै बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना, अमै सरोवर पियो अमै सरोवरो पियो, हर हर नामा राम संत संग मिले, जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसरे, आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीसर। अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकि महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया, तेरा कोई ना बेली राम कोई ना बेली होए तेरा, सदा पछोता वहे गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से देह आवे। तार वार विशुन्ने ने पाप जुड़ते जम भग गौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूप करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया, एक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी, बीच ना कोय करे अकिरत कान विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया। पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया, गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया, तब तो थम गल लातिया। काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पहिता पिया, बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया, तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम। पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला। अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला, शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा। बिनवंत नानक कर दे राखो गोबिंद दीन दयारा, सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम। सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम, सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइए। भज साध संगे मिले रंगे बहुत जोन ना ताइए, गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया, बिनवंत नानक आप मिलिया बहुत कतु ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम,
माया मोहे मगन कट लिहो मुरारी राम। लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने। अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कार्य अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी। बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम। पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। अगाध बोधिया पार करते मोहे नीच कछु ना जाना। रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना। त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी। नानक शरण सम्राट स्वामी पैज रख मोरी। जा ते विछड़िया तिन आप मिलाया राम। साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण में प्रगट पए। सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले। छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया। नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया। बिहागड़ा महला पंजवा संत बोल सो तरमीड़िया। मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया। माया ब्योहारी राम संग तेरा कश ना चले बिना गोविंद नामा। देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा। पुत्र कलतरना संग सोबा हस्त कोर विकारी। बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे। जागत कत नाही राम। माया झूठ रुदन केते बिललाही राम। बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं। सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई। आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कटकट आही। बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही। नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम। सर पर विछड़ना मोहे पछताणे राम। हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है। बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हां हां करत ना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने। बिनवंत नानक बिन नाम हर के केतियां पछताने। तार अनुग्रह अपना कर लीना राम। पूजा गह काढ लियो साधु संग दीना राम। साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले। महाधर्म सो दान किरिया संग तेरे से चले। रसना अराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना। नानक जिसनो हर मिलाए सो सर्व गुण परबीना। बिहागड़े की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुर सेवा ते सुख पाई है होर थे सुख ना पाल। गुर कै शब्द मन भेदी है सदा वसै हर नाल। नानक नाम तिन्ना कौ मिले जिन हर वेखै नजर निहाल। महला तीजा सिफत खजाना बख्स है जिस बख्सै सो खर्चै खाए। सतगुर बिन हथ ना आवई सब थके कर्म कुमाए। नानक मनमुख जगत तनहीन है अगै भुखा के खाए। पौड़ी सब तेरी तू

जो हर प्रभाव है सो थी सब करन तेरा कराया सालाह हो हर सबना ते वड्डा जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जग जीता सब कोए नामे कार्ज सिद्ध है सहजे होए सो होए।

आपे जल आपे दे शिंगा, आपे चुली भरावे, आपे संगत सद बहाले, आपे विदा करावे। जिसनों कृपाल होवे हर आपे, तिसनों हुक्म मनावे। श्लोक महला तीजा, कर्म धर्म।

माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्त अंध, महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जां सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज, नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदों क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्ध उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा, कहया कथया ना पाईऐ, अंदन रह सदा गुण गाए, विण कर मैं कहना ना पायो, भौक मोए बिललाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आए, नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र, आप कथा आप भीजै, आपे ही बै पूजे करता, आप पर पंच करी जय। आप निर्विरत आप निर्विरति, आपे कथ कथी जय। आपे पुन सब आप कराए, आप अलिप्त वर्ती जय, आपे दुख सुख देवै करता, आपे बख्श करी जय। सलोक महला तीजा, सेखा अंदरों जोर छड़ तू, पाओ कर चल गवाए, गुर कै पै केते निस्तरे, पै विच निरपाओ पाए। मन कठोर शब्द भे तू, सांत वसै मन आए, शांति विचकार कमावणी, सा खसम पाए थाए। नानक काम क्रोध किनै ना पायो, पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा, मन मुख माया मोह है, नाम ना लगो प्यार, कूड़ कमावै कूड़ संग्रह, कूड़ करे आहार। बिख माया तन संच मरे, अंते होए सब शार, कर्म धर्म सुच संयम करे, अंतर लो विकार। नानक जे मन मुख कमावै, सो थाए ना पवै, दरगै होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी, आपे खंडवर भंड करे, आप समुंद आप है सागर, आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनो गुरमुख करे हरे, आपे पवजल आप है बोए था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा, सदगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचिंत वसै मन आए। जन्म मरण दुख कटिया, हम मैं ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सच्चे रहे समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया।

संध्या नानक संध्या करे मनमुखी जियो ना टिकै मर जमै होए खुवार महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए नानक सतगुर मिलया मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकर दास पाया आपे दास अठ वरन उपाया नो आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़ आपे बक्से करे दया आपा भुल ना भुले कभी सब सच तपावस सच थया आपे जिन्ना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भरम गया श्लोक महला पंजवां हर नाम ना सिमरै साध संग तै तन उड़ै खेह जिन कीती तसै ना जानी नानक फेटा लूनी देह महला पंजवां घट वसै चरणार बिंद रसना जपै गोपाल नानक सो प्रभ सिमरिया तिस देही कौपाल पौड़ी आपे आपे अड़सठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वरतै स्वामी आप जपाए नाम आप दयाल हुए पौखंड नो आप करै सबदान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सदही दरगै पाए मान जिस दी पैज रखै हर स्वामी सो सच्चा हर जान श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द स्यो चेतना लावई जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिराए एहनिस जलत बिहाए जो तिस भावै सो थीऐ कहना किछु ना जाए महला तीजा सतगुरु फरमाया कारिए करे हो गुरु द्वारा होए कै सब संभाले हो साहिब सदा हजूर है भरमे के छौड़ कट कै अंतर जो तरे हो हर का नाम अमृत है दारू यो लाए हो सतगुर का पाणा चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक हथ है सुख है अंदर रख सी अगै हर स्यों केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सिंचै आपे ही मुए पाए आपे करता आपे भुगता आपे दे दिवाए आपे साहेब आपे है राखा आपे रहा सुमाए जन नानक वड्याई आखे हर करते की जिसनों तिल ना तमाए श्लोक महला तीजा मानस परया आणिया मानस परया आए जित पीतै मत दूर होए बरल पवै विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जित पीतै खसम विसरै दरगह मिलै सजाए झूठा मद मूल ना पीचई जेका पार वसाए नानक नदरी सब सच मद पाई है सतगुर मिले जिस आए सदा साहेब कै रंग रह महली पावै थाओ महला तीजा एहो जगत जीवत मरै जा इसनो सोजी होए जा तिन सवालिया ता सब रहया जगाए ता सिद्ध होए नानक नदर करे जे अपनी सतगुर मिलै सोए गुर प्रसाद जीवत मरै ता फिर मरण ना होए पौड़ी जिसदा कीता सब किश होवै जिसनो परवाह नाही किसै केरी हर जियो तेरा दिता सब को खावै सब मोहताजी कढ़ै तेरी जे तुदनो सा लाहे सो सब किश पावै जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साहो सच्चा वणजारा जिन वखर लद्या हर नाम तन तेरी सब तिसैनो सा लाहे संतो जिन दूजे भाव की मार विडारी ढेरी सलोक कबीरा मरता मरता जग मुआ मर पे ना जाने कोए ऐसी मरनी जो मरै बौर न मरना होए महला तीजा
क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहेब।

गुर का शब्द कमाए। हुक्म मन ता हर मिले ता विचों हो मैं जाए रहाओ। हम मैं सब शरीर है, हम मैं उपत होए, हम मैं वड्डा गुबार है। हम मैं विच बुझ न सके कोए, हम मैं विच भगत ना हो वही। हुक्म ना बुझिया जाए, हम मैं विच जियो बंद है, नाम वसै मन आए। नानक सतगुर मिले हम मैं गई, ता सच वसया मन आए। सच कमावै सच रहै, सच्चे सेव समाए। वडहंस महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सेज एक एको प्रभ ठाकर, गुरमुख हर रावे सुख सागर। मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा, गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम। हाँ वार वार अपने गुरु कौ जासा रहाओ। मैं अवगण

नानक गरीब राखो हर मेरे वढ़ंस महला चौथा। मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी, हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी, हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो एयानी। जो पिर पावे सा सुहागण, साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ। मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा, तेरे अनेक प्यारे हाँ पिर चित ना आवा। जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण, से मैं गुण नाही हाँ क्या करी दुहागण। नित सुहागण।

जल थल महियल रहया परपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण पर्यो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वरदाता अंतर जामी। सब मैं रविया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उरतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै ना।

रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जात कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

है तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ तुझे आपे कारण आपे करना हुक्मे जमण हुक्मे मरना नाम तेरा मंत्र आधारी नानक दास बख्शीश तुम्हारी वढ़ांस।

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझै कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसै ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आख या आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब

करहो दया तेरा नाम लखाना सब यो पाई है आप आपे सर्वे समाना सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझी की है राजे एक ना पिक पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एक परम पुलाना सदा दया करो अपनी ता नाम खाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दू गया सुख आए समाना गावन सुर नर सुगड़ सुजाना सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेत नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेत मूले जो आया ते जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवै पाओ कर लागा साओ प्राणी साओ प्राणी तिन्ना लागा जिन्नी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़ै सुवाया एक कर्म धर्म ना होए संजम जामना एक पछाणी भक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हाँ बलिहारी साचे नावै राज तेरा कबो ना जावै राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावै चाकर ता तेरा सोए होवै जोए सहे समावै दुश्मन ता दुख ना लगै मूले पाप नेड़ ना आवे हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावै जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करे स्वामी तेरे द्वारे जपै ता

जिन्हें आप गवाया तिन्हीं पर पाया रंग सिंह रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती अंधन नाम वखाणे कामन वड भागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर कै पाए हर वर रावे सदा मुइये निकर वासा पाए निकर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी परलियाला जुबन बाला अंधन कंध सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडांस महला तीजा गुरमुख सब

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे व्यापारा सतगुर सेवने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई हौ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवने अपना से जनवड पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत ने चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुरे अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजिए सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुणमय गुणी समाई राम गुणमय गुणी समाए जिस आप बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पत खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनों एतवा पार लाए रतन पदार्थ वनजी है जा सतगुर देव बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल बेखावनी बो वदै विकारा राम बो वदै विकारा सह सहो संसारा बिन नाम पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणा बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा खोटे खरे सब परखिया नु ते सच्चा कै दरबारा राम खोटे दरगह सुटियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुग्ध गवारा मनमुख जन्म गवाया बिखिया माया जिन जगत भुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुखटे संसारा खोटे खरे परखियन ते सच्चा दरबारा राम आप करे किस आखिया होर करना छूना जाई राम जित पावै तित लाए सी जो तिसदी वड्याई राम जो तिसदी वड्याई आप कराई वर यामना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई गुरप्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखिए होर करना किछु ना जाई

सरनाई राम अरदास करी गुरपुरे आगे। रख लेवो देहो बढ़ाई राम रख लेवो सरनाई हर नाम बढ़ाई। तो जेवड़े अवरना दाता सेवा लागे सेवड़ भागे जुजगु एको जाता। जत सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई। जो हर मत दे साई उपजै होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम। आपे दे बुझाई अवरना भाई गुरमुख हर चाखिया। दरसा चै सदा है साचा साचै शब्द सुपाखिया। घर मैं निज कर पाया सतगुर दे वडाई। नानक जो नाम रते सही महल पायन मत प्रवान सच साई। वडांस महला चौथा शंत एको अंकार सतगुर प्रसाद। मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम। हर हर नाम मेरा मन वसाई राम। हर हर नाम मेरा मन वसाई सब दुख विसार नहारा। वडभागी गुर दर्शन पाया तन तन सतगुरु हमारा। उठत बैठत सतगुर सेवो जित सेवे सांत पाई। मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई। हों जीवा सतगुर देख सर से राम। हर नाम दृढ़ाए जप हर नाम विगसे राम। जप हर नाम कमल परगासे हर

रोग गया दुख लाथा, हर सह समाध लगाई, हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसे, हों जीवा सतगुर देख सरसे, कोई आन मिलावे, मेरा सतगुर पूरा राम, हों मन तन देवा तिस काट शरीर आराम, हाँ मन तन काट तिस देई, जो सतगुर बचन सुनाए, मेरा मन बैराग पाया बैरागी, मिल गुर दर्शन सुख पाए, हर हर कृपा करो सुखदाते, देहो सतगुर चरण हम तूरा, कोई आन मिलावे, मेरा सतगुर पूरा, गुर जेवड़ दाता, मैं अवर ना कोई राम, हर दानो हर दान देवे, हर पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम जिन्नी आराध्या, तिनका दुख परम पौ भागा, सेवक पाए मिले वडभागी, जिन हर जिन गुर चरनी मन लागा, कहो नानक हरिया मिलाए, मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता, मैं अवर ना कोई, वडहंस महला चौथा, हाँ गुरबिन खरी निमानी राम, जग जीवन दाता, गुर मेल समाणी राम, सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम ते आया, जिस कारण हाँ टूंडेंदी, सो सज्जन हर कर पाया, एक दृढ़ हर एको जाता, हर आत्म राम पछाणी, हाँ गुरबिन खरी निमानी, जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया, तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम, तिन चरण सिरेवे, हम लागे तिनके पाए राम, हर हर चरण सिरेवे तिनके, जिन सतगुर पुरख प्रभ त्याया, तू वडदाता अंतर जामी, मेरी सरदा पू हर राया, गुरसिख मेल मेरी सरदा पूरी, आंदन राम गुण गाए, जिन सतगुर पाया, तिन हर प्रभ मेल मिलाए, हाँ वारी गुरसिख मीत प्यारे राम, हर नाम सुनाए, मेरा प्रीतम नामा दारू राम, हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, तिस बिन कड़ी निमख नहीं जीवा, हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरमुख अमृत पीवा, हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे, हों वारी गुरसिख मीत प्यारे, हर आपे पुरख निरंजन सोई राम, हर आपे मेले करे सो होई राम, जो हर प्रभ पावे सोई होवे, अवर न करना जाई, बहुत सियाणप लया ना जाई, कर थाके सब चतराई, गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर बिन अवर ना कोई, हर आपे पुरख निरंजन सोई, वडहंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम, तिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञाना देर बिनासे, सतगुर सेव परम पद पाया, हर जपया सास गिरा से, जिन कौ हर प्रभ कृपा तारी, ते सतगुर सेवा लाया, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया, मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुर बिन रहन ना जाई राम, हर नाम देवे, मेरा अंत सिखाई राम, हर हर नाम मेरा अंत सिखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, जिथे पुत्र कलत्र कोई बेली नाहीं, तिथे हर हर नाम छडाया, धन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिल हर

जिनी दर्शन जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम, तेने फल तेने फल जन्म सब बिरथा गवाया राम। ने फल जन्म तेन बिरथा गवाया, ते सागत मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिनका दर्शना करी आओ, जिनी हर हर नाम ना त्याया, जिनी दर्शन जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया। हम चात्रक दीन हर पास बेनंती राम, गुरमेल गुरमेल मेरा प्यारा, हम सतगुर करै भक्ति राम। हर हर सतगुर करै भक्ति, जा हर प्रभु कृपा तारे, मैं गुर

हम चात्रक दीन हर पास बेनंती, वड़हंस महल्ला चौथा। हर कृपा कर सतगुर मेल सुदाता राम, हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम। सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे नित करे बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता। हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुखदाता, सुन गुरमुख नाम। साबिन से हो मैं पापा राम, जप हर नाम लथे अड़े जगता पराम। हर हर नाम जिनी आराध्या, तिनके दुख पाप निवारे। सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना, जम कंकर मार बिदारे। हर हर हर प्रभ कृपा तारी, सुखदाते दुख लाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हम मैं पापा। जप हर नाम, मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरुत पय शरीरा। अंदन सह समाद हर लागी, हर जपया गैर गंभीरा। जात नाम जिन त्याया, तिन परम पदार्थ पाया। जप हर नाम, मेरे मन पाया।

हर दयाल शरण आया, तू दुख भंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे, हर तारो कृपा कर कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला।

है। मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरण परवानो, सूर्य से ही आज्ञा आखी है, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु भागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेखै साहब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेखै आपे बूझै आपे हुक्म पछाणै, जिन किश किया सोई जाणै तां का रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोईऐ बाजी है एहो संसारो, वडहंस महला पहला दखणी, सच सरंदा सच्चा जानियै सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया सचड़ा लाखिया पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान गुरबिन कोरियां दारो, सूरज चंद सिरजियान अहनिस चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू सचड़ा देह प्यारो, रहाओ तुद सिरजनी मेदनी, तुद सिरजी मेदनी, दुख सुख देवन हारो, नारी पुरख सिरजिया बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया सच नवेण नहारो, आवागमन सिरजिया तू थिर करना हारो, जमन मरना आए गया बदक जियो बिकारो, पूंडड़ै नाम विसारिया बूढ़ड़ै क्या तिस्चारो, गुण छोड़ बिखलदया अवगुण का वणजारो, सदड़े आए तना जानिया हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मिलन हारो, रूप ना जाने सोहनी है हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी तो नहेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सचे हंस गया गैनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मरमाइए महल रुनी दरबारे, रवो कंत में लियो सच्चे के गुण सारे, जल मल जाली ना वालिया कपड़ पटिया बारे, वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मोए मन मारे, जानी विछुनड़े मेरा मरण भया त्रिग जीवन संसारे, जीवत मरे सो जानी है फिर सचड़ा हित प्यारे, तुसी रोवो रोवन आई हो झूठ मुठी संसारे, हाँ मुठड़ी तंदे तावनिया फिर छोड़ियाड़ी विदन कारे, कर कर कंत महेलिया रूड़ै हित प्यारे, मैं फिर सच सलाहना हौ रे सियाड़िए नाम पतारे, गुर मिलिया वेस पलटिया सा तन सच सिंगारो, आवो मिलो सहेलियो सिमरो सिरजन हारो, बैयर नाम सुहागणी सच सवारन हारो, गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो, वडहंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया सो साहेब कुदरत जानो वा, सचड़ा दूर ना पाली है कटकट शब्द पछाणो वा, सच शब्द पछाणो दूर ना जानो, जिन एह रचना राची नाम ते आए ता सुख पाए, बिन नामे बिड़काची जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कह वखाणो, जिन जग थाप वताया जालो सो साहिब परवानो, बाबा आया है उठ चलना अद पंद है संसारो वा, सिर सिर सचड़ै लिखिया दुख सुख पुरब विचारो वा, दुख सुख दिया जेहा किया सो निबह जी नाले, जेहे कर्म कराए करता दूजी कार ना पाले, आप निरालम तंदे बांधी कर हुक्म छडावन हारो, अज कल करदिया काल व्यापै दूजे पाए विकारो, जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़े अंध गवारो वा, ना जल लेप तो लाइया ना भोजन प्रकारो वा,
ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜਮਨ ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਪਾਰੋ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ

ज्ञान में होनी मुठी, बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो, रोवै उगणियारी झूठी। पिर जग जीवन किसनो रोई है, रोवै कंत विसारे, सब जग आपो पायो नो आमन जान संसारे। सो पिर सच्चा सद ही साचा है, ना यो मरे ना जाए, भूली फिरे तन एणिया, रंड बैठी दूजे पाए, रंड बैठी दूजे पाए, माया मोहे दुख पाए, आव कटे तन शीजे। जो किश आया सब किश जासी, दुख लागा पाए दूजे, जमकाल ना सूजे, माया जग लूजे, लब लोभ चित लाए। सो पर साचा सद ही साचा, ना एहो मरे ना जाए, एक रोवे पिरे विशुनिया, अंधी ना जाने पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा समाले, पिर अंतर समाले सदा है नाले, मनमुख जाता दूरे। एहो तन रुले रुलाया, काम ना आया, जिन खसम ना जाता हदूरे, नानक सातन मिले मिलाई, पिर अंतर सदा समाले, एक रोवे पिरे विशुनिया, अंधी ना जाने पिर है नाले, वढांस महला तीजा। रोवे पिरे विशुनिया, मैं पिर सचड़ा है सदा नाले, जिन्नी चलन सही जाने आ, सतगुर सेवै नाम समाले, सदा नाम समाले, सतगुर है नाले, सतगुर सेव सुख पाया, सबदे काल मार साची और तार, फिर आवन जान ना होया। सच्चा साहेब सच्ची नाई, वेखे नजर निहाले, रोवे पिरो विशुनिया, मैं पिर सचड़ा है सदा नाले, प्रभ मेरा साहब शब्द ऊंचा है, के मिला प्रीतम प्यारे, सतगुर मिली ता सहज मिली, पिर राखिया और तारे, सदा और तारे नेहो नाल प्यारे, सतगुर ते पिर दिसै। माया मोह का कच्चा चोला, तित पैदा पग खिसै, पिर रंग नहीं पिर रंग राता, सो सच्चा चोला, तित पैदा तिखा निवारे, पर मेरा साहेब शब्द ऊंचा है, क्यों मिला प्रीतम प्यारे। मैं प्रभ सच पछाणिया, होर भूली अवगणियारे, मैं सदा रावे पिर अपना, सचड़ै शब्द।

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत उपाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यार।

मोए बग बपड़े सिर ताली उपर पाओ पौड़ी। तू आपे ही आप है आप कारण किया, तू आपे आप निरंकार है कोई अवर ना बिया। तू करण कारण समरथ है तू करे सोथिया। तू अण मंगया दान देवना सब ना हां जिया। सब आखो सतगुरु वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया। श्लोक महला तीजा। पै विच सब आकार है निरपौ हर जियो सोए। सतगुर सेवे आए हर मन वसै तिथे पौ कदे ना होए। दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवै पोहे न सकै कोए। गुरमुख मन विचारिया जो तिस पावै सो होए। नानक आपे ही पत रख सी कार्ज सवारे सोए। महला तीजा। एक सज्जन चले एक चल गए रेंदे पी फुन जाहे। जिनी सतगुर ना सेवियो से आए गए पछताहे। नानक सच रते से ना विछड़े सतगुर सेव समाहे। पौड़ी। तिस मिलिए सतगुर सज्जन जिस अंतर हर गुणकारी। तिस मिलिए सतगुर प्रीत मैं जिन हम मैं विचो मारी। सो सतगुर पूरा तन तन है जिन हर उपदेश दे सब सिरट सवारी। नित जपियो संतो राम नाम पहो जल बिखतारी। गुरपूरै हर उपदेसिया गुर विटड़ियो हाँ सदवारी। श्लोक महला तीजा। सतगुर की सेवा चाकरी सुखी हूं सुखसार। ऐथे मिलन वड़ियाईया दरगह मुख द्वार। सच्ची कार कमावनी सच पहनण सच नाम आधार। सच्ची संगत सच मिले सच्चे नाए प्यार। सच्चे शब्द हरख सदा दर सच्चे सच्यार। नानक सतगुर की सेवा सो करे जिसनो नजर करे करतार। महला तीजा। होर विडानी चाकरी त्रिग जीवन त्रिगवास। अमृत छोड़ बिख लगे बिख खटना बिख रास। बिख खाना बिख पहनना बिख के मुख गिरास। ऐथे दुखो दुख कमावना मुया नरक निवास। मन मुख मेह मैले शब्द ना जाननी काम क्रोध विनाश। सतगुर का पाओ छोड़या मन अठ कम न आवै रास। जमपुर बदे मारिय को ना सुने अरदास। नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास। पौड़ी। सो सतगुर सेवो साध जन जिन हर हर नाम दृढ़ाया। सो सतगुर पूजो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया। सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया। ते सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया। सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया। श्लोक महला तीजा। सतगुर मिले भुख गई पेखी भुख ना जाए। दुख लगे घर घर फिरे अगे दूनी मिले सजाए। अंदर सहज ना आयो सहजे ही लै खाए। मन हठ जिसते मंगना लैना दुख मनाए। इस भेखे थावों गिरो भला जिथों को वरसाए। सब दे रते तिना सोजी पई दूजे परम भुलाए। पया किरत कमावना कहना कछु ना जाए। नानक जोत पावै से भले जिनकी पत पावै थाए। महला तीजा। सतगुर सेवै सदा सुख जन मरण दुख जाए। चिंता मूल ना हो वही अचिंत वसै मन आए। अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाए। मैल गई मन निर्मल होवा अमृत सा तीर्थ नाए। सज्जन मिले सज्जना सच्चा शब्द सुभाए। कर ही परचा पाया ज्योति ज्योत मिलाए। पाखंड जम काल ना छोड़ई लै जासी पत गवाए।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ ਪੌੜੀ। ਤਿਤ ਜਾਏ ਬਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਜਿਥੈ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਲੋਈ ਐ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਹੋ ਹਰ ਤਤ ਨਾ ਖੋਈ ਐ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਹਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਢੋਈ ਐ ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਲਾਟ ਲਿਖੋਈ ਐ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਹੋ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਗਾਲ ਗਲੋਈ ਐ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸੱਜਣਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿੰਨੀ ਧਿਆਇਆ ਸੱਚੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸਬਦਿਆ ਪਾਰ ਇਹ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਜੇ ਆ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਇਕ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਵਿਛੜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਿਆਰ ਮਨ ਮੁਖ ਸੇਤੀ ਦੋਸਤੀ ਥੋੜੜਿਆ ਦਿਨ ਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਟੁੱਟਦੀ ਵਿਲਮ ਨਾ ਹੋਵਈ ਇਤ ਦੋਸਤੀ ਚਲਨ ਵਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕਾ ਭਉ ਨਾਹੀ ਨਾਮ ਨਾ ਕਰੈ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਜੇ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਰਤਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਕ ਸਦਾ ਇਕ ਤੈ ਰੰਗ ਰਹਿ ਤਿਨ ਕਹਿ ਹੋ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਤਿਨ ਕਉ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗਉ ਪਾਏ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀਐ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖੀਏ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ ਪੌੜੀ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਨੈ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਛਡਾਈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਸਾ ਬਾਸ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਸੋਜੀ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦੀ ਜਲ ਮੁਈ ਜਲ ਜਲ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਤਲ ਜੇ

ससरै चित्र जवाई, बाल कन्या कहो बा प्यारा, भाई कहो अत भाई। हुक्म भया बाहर घर छोड़िया, खिर मैं पई पराई। नाम दान इशनान ना मनमुख, तित तन तूड़ तुम्हाई। मन मानिया नाम सिखाई, पाए परो गुर कै बलिहार। जिन साची बूझ बुझाई रहा, जग स्यों झूठ प्रीत मन बेदया। जन स्यों वाद रिचाई, माया मगन अहनस मग जो है। नाम ना लेवै मरै बिख खाई, गंदन वैन रता हितकारी। शब्द सुरत ना आई, रंग ना राता रस नहीं बेदया। मनमुख पत गवाई, साध सवा मैं सहज ना चाखिया। जे बा रस नहीं राई, मन तन तन अपना कर जानिया। दर की खबर ना पाई, अखी मीट चलिया अंधियारा। घर दर दिसै ना पाई, जमदर बाधा ठौर ना पावै। अपना किया कमाई, नदर करे ता अखी वेखा। कहना कथन न जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही। अमृत हृदय वसाई, निरपौ निरंकार निरवैर। पूर्ण जो समाई, नानक गुरविन परम ना भागै। सच नाम वडियाई, सोरठ महला पहला। दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंड चौबारा। सगल पवन की मूर्त एका, मुख तेरे टकसाला। मेरे साहेबा तेरे चोज विडाणा, जल थल महियल पर पुर लीना। आपे सर्ब समाणा रहाओ, जह जह देखा तै जो तुम्हारी। तेरा रूप कनेहा, एकत रूप फिर प्रसन्ना। कोई न किसी जेहा, अंडज जेरज उत्पुज सेतज। तेरे कीते जनता, एक पुरु मैं तेरा देखिया। तू सबना माहे रवंता, तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया। मैं मूर्ख किश दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहेबा। डुबदा पत्थर लीजै, सोरठ महला पहला। हाँ पापी पतत परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी। अमृत चाख परम रसराते, ठाकर शरण तुम्हारी। करता तू मैं मान निमाने, मान महत नाम तन पल्ले। साचे शब्द समाने रहाओ, तू पूरा हम ऊरे ओछे। तू गौरा हम हौरे, तुझ ही मन राते। अहनस प्रभाते, हर रसना जाप मन रे। तुम साचे हम तुम ही रचे, शब्द भेद फुन साचे। अहनस नाम रते से सूचे, मर जन्मे से काचे। अवर ना दिसे किसा लाही, तिसे शरीक ना कोई। प्रणवत नानक दासन दासा, गुरमत जानिया सोई। सोरठ महला पहला, अलाखिया पारिया गामिया गोचर। ना तिस काल ना करमा, जातया जाता जोनी संपो। ना तिस पाओ ना परमा, साचे सचियार विटों कुर्बान। ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया, साचे शब्द निशान रहाओ। ना तिस मात पिता सुध बंधप, ना तिस कामना नारी। अकुल निरंजन अपर अपंप्र, सगली जो तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योत सबाई। बजर कपाट मुक्ते गुरमती, निरपै ताड़ी लाई। जन तो पाए काल सिर जनता, वसगत जुगत सबाई। सतगुर से पदार्थ पावै, छूटै शब्द कमाई। सोचे पांडै ऐसा समावै, विरला सूचे चारी। तंतै को परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। सोरठ महला पहला, ज्यो मीना बिन पानी है, त्यों सागत मरै प्यास। त्यों हर बिन मरिया रे मना, जो बिरथा जावै सास। मन रे राम नाम जस ले, बिन गुर एहो रस क्यों लहो। गुर मिलै हर दे रहाओ, संत जना मिल संगति। गुरमुख तीर्थ होए, आठ सठ तीर्थ मजना। गुरदर्श प्राप्त होए, ज्यो जोगी जत बाहरा। तप नाही सत संतोख,
त्यो नामै बिन देहुरी जम मारै अंतर दोख सागत प्रेम न पाईऐ हर पाईऐ सतगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिलै कहो नानक सिफत समाए सोरठ महला पहला तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे पेखारी जियो मैं क्या मांगा किश थिर न रहाई हर दीजै नाम प्यारी जियो घट घट रव रया बनवारी जल थल महियल गुप्तो वरतै गुरसबदी देख निहारी जियो रहाओ मर्त पयाल आकाश दिखायो गुर सतगुर कृपा धारी जियो सो ब्रह्मा जोनी हैपी होनी घट पीतर देख मुरारी जियो जन्म मरण को एहो जग बपड़ो इन दूजे भगत विसारी जियो सतगुर मिलै ता गुरमत पाई है साकत बाजी हारी जियो सतगुर बंधन तोड़ निरारे बहुड़ ना गर्व मजारी जियो नानक ज्ञान रतन प्रगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सोरठ महला पहला जिस जल निद कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो छोडो वेस पेख चतराई दुबदा एहो फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पावै कारे अमृत कट माही जियो रहाओ अवगुण छोड़ गुणा को धावो कर अवगुण पछताही जियो सर अवसर की सार न जाने फिर कीच बुढ़ाही जियो अंतर मैल लोभ बहु झूठे बाहर नामो काही जियो निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो सच गुरबचनी फल पाही जियो ज्यो पावै त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो सोरठ महला पहला पंच पदे अपना घर मुस्त राख ना सके की पर कर जोहन लागा घर दर राख जे रस चाखे जो गुरमुख सेवक लागा मन रे समझ कवन मत लागा नाम विसार अनरस लोबाने फिर पछताहे अभागा रहाओ आवत कहो हरख जात कहो रोवै एहो दुख सुख नाले लागा आपे दुख सुख भोग भोगावै गुरमुख सो अनरागा हर रसी उपरे अवर क्या कहिए जिन पिया सो तृप्तागा माया मोहत जिन एहो रस खोया जा साकत दुरमत लागा मन का जियो पवन पत देही देही मैं देव समागा जे तू देहे ता हर रस गाई मन तृप्तै हर लिव लागा साध संगत मैं हर रस पाईऐ गुर मिलै जम पौ भागा नानक राम नाम जप गुरमुख हर पाए मस्तक भागा सोरठ महला पहला सर्ब जिया सर लेख तो राहू बिन लेखै नहीं कोई जियो आप अलेख कुदरत कर देखै हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जपो सुख होई अहनिस गुर कै बचन सरेव हरदाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवरना दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चल तो ठाक रखो कर अपने गुर मिलिया अहमत होई जियो देख दृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो अपियो परम सुख पाईऐ निज कर वासा होई जियो जन्म मरण

नानक नाम रताय करंगी शब्द सवारण हारा सोरठ महला तीजा। हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पालो खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा। हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा। हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटों वारिया सद ही तेरे नाम विटों बल जाई रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा। हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यो रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से किते आए संसारा। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मै वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुक्त गुबारा। आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै भाई करता करे सो होई। नानक नाम वसिया मन अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा। गुरमुख भगत करै प्रभु पावै अंदर नाम वखाणे भगतां की सार करै आप राखै जो तेरे मन पाणे। तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कै गुणी समाणे मन मेरे हर जियो सदा समाल अंत काल तेरा बेली होवै सदा निभै तेरे नाल रहाओ। दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावै ना बूझै विचारे निंदा दुष्टि ते किन फल पाया हर नाक्ष नखै बिदारे। प्रहलाद जन सद हर गुण गावै हर जियो ले उबारे आप सकौ बहु भला कर जाणै मनमुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई। राम नाम कदे चेतै नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए। सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हों लागा तिन कह पाए। सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पह पाई जे गुर के पाने विच आवै अपने पाने जो चले पाई विछड़ चोटां खावै। बिन सतगुर सो कदे ना पावै पाई फिर पछोतावै हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दो काटे आपे मेल मिलाई रहाओ। एहो कुटुंब सब जी के

बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई, मनमुख दूजै पाए। तोह कुटै मनमुख कर्म करै पाई, पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै ना मन रव्या पाई, साची प्रीत प्यार। सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कै हित अपार। आया सो प्रमाण है पाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाईऐ भाई, गुरसबदी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, तिही गुणी त्रिभवन व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छुटिया पाई। पूछो ज्ञानिया जाए, मन रे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए। हर जियो तेरे मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजै पाई, नाए विसरिया मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे पाई, पवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई, हृदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उबरे पाई, राम नाम लिव लाए। नानक नाव बेड़ा नाव तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मरजन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए। सतगुर सेवै ता सुख पावै, नाहे ता जाहेगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै, हरा साधना आया। संध्या तर्पण करै गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सोवट भागी, जिसनो वाप मिलाए। हर रस पी जन सदा तृप्ता से, विचों वाप गवाए। एहो जग अंधा सब अंध कमावै, बिन गुर मग न पाए। नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै, करै अंदर सच पाए। सोरठ महला तीजा

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सहिष्मानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा के बिख कटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरण ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक ना वरते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गात्मा तो तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुखियन दा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौ मैं बंधन कमाए जमन मरन शरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम।

कोट पराध मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संगवट भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी

जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई एह मन तेरा पाई रहाओ पाव मिलोवा मल मल तोवा एह मन तैकू देसा सुन मीता हों तेरी सरनाई आया प्रभ मिल

जेह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरणे जेह नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गरणे जेह गुरमान प्रभु लिव लाई ते महा आनंद रस करया जेह प्रभु बिसार गुरते बेमुखाई ते नरक कोर मैं परया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय पय मगन चरनारा सोरठ महला।

हर जन को ही सुहावे पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाओ अमलन स्यो अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवां हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर देसा रहाओ तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम रखो अपने बाला।